सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: 1000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने

0: अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर्ड के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेरवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन जब किसी सत्पात्र के द्वारा उसके मुख से किसी भाग्यशाली के कर्णों में पड़ता है, तो उस भाग्यशाली के मन रूपी कोमल कमल खिल उठता है और नेत्र उस स्वरूप की लालसा करने लगते हैं और स्वतः ही मुख पर वो पावन नाम बारंबार आने लग जाता है।

जगत नियंता सबके पालनहारी प्रत्येक जीव पर दया करते हैं। यदि किसी के सच्चे मन के साथ उसमें समर्पण की भावना जागृत हो जाए तो श्री प्रभु के द्वारा सदा सर्वदा उसे शरणागति के साथ साथ अभय भी प्रदान होता है।

श्री कृष्ण का मन श्री राधा में बसा हुआ है और वहीं ब्रजराज श्री राधा की प्राणधन है श्री कृष्ण।

जाने मन ए वतन जाने मन जाने मन।

जानेमन जानेमन जानेमन एवतन एवतन एवतन जानेमन जानेमन जानेमन।

आज के कार्यक्रम वंदना में आपने भक्ति रचनाओं को जिन स्वरों में सुना वे स्वर थे किशोरी अमोनकर, राजेंद्र काचरू, हरिओम शरण, सुरेश वाडेकर और ये देशगान आपने सुना संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 होने को हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं भरत हरि के निदेशक से विद्या संबंधी पाठ। आलेख और वाचन मधुर शास्त्री का है।

त्वमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला का ज्ञान नहीं होता, वह मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। अंतर यह है कि ऐसा मनुष्य पशु होते हुए भी घास नहीं खाता और जीवित रहता है। कवि का कथन अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि कला विहीन जीवन कभी सुसंस्कृत नहीं हो सकता, संस्कृति विहीन मनुष्य महान पद का अधिकारी नहीं होता। मनुष्य के जीवन में महत्ता के लिए क्या आवश्यक है? भर्तृहरि कहते हैं,

जिन व्यक्तियों के पास ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, सदाचार नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य इस विनाशशील संसार में पृथ्वी पर बोझ ही बने रहते हैं। वे मनुष्य के रूप में पशुओं के समान घूमते हैं। विचार पूर्वक देखने पर प्रत्येक गुण एक दूसरे से गुथा हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य का जीवन सफल कब कहा जाता है? जब वो कुछ गुणों को धारण कर लेता है। भर्तृहरि कहते हैं, वे पदे धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदा सेवा पटुता युधि विक्रमा यशसे चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृते सेद्धमिदं हि महात्मनाम। विपत्ति में धीरज रखना, समृद्धि प्राप्त हो जाने पर सहनशील होना, सभा में वाणी की चतुरता दिखाना, युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन करना, यश के कार्यों में रुचि लेना, शास्त्रों का सतत अध्ययन का व्यसन होना, ये गुण महान आत्माओं में प्रकृति से सिद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे वह मनुष्य समाज में प्रतिष्ठित होगा, महान कहलाएगा। जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए कवि ने प्राकृतिक स्वभाव के गुणों का भी निर्देश किया है। महान मनुष्य का सौंदर्य क्या है? महान मनुष्य से ही समाज सुखी रह सकता है। उन गुणों की ओर भर्तृहरि कहते हैं, करेश्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे।

0: मनुष्य संपत्ति से महान नहीं होता। आज मनुष्य धन के लालच में अपना महत्व खो रहा है। महान वह है जिसके हाथ में प्रशंसनीय त्याग है, सिर पर अपने से बड़ों का प्रेम रूप आशीर्वाद है, मुख में सत्यवाणी है, अतुलनीय विजय प्राप्त करने वाली वीरता भुजाओं में है, हृदय में स्वस्थ विचार है, ज्ञान प्राप्त की एकमात्र सफलता है। ऐसे व्यक्ति यदि संपत्तिहीन भी हैं, तो भी ये गुण ही उनके आभूषण हैं। संपत् सुमहताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत् सुच महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्तिशील होने पर महान मनुष्य का हृदय कमल के समान कोमल हो जाता है, अर्थात सुगंध विस्तार की भावना, दूसरों को अपने सौंदर्य से प्रसन्नता देना आदि कमल के गुणों के समान विनम्रता, परोपकार भावना, क्षमा आदि गुण आ जाते हैं। विपत्ति के आने पर पर्वत के समान कठोर हो जाते हैं। महान मनुष्य संघर्ष से नहीं डरते, संघर्ष में विचलित नहीं होते, पर्वत के समान अडिग रहते हैं। मनुष्यता के विकास के लिए विनम्रता ही आवश्यक है, विनम्र ही परोपकारी होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का ये प्रसंग, स्वर रविन्द्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का है, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है।

वास्तव में भयरहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्री राम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम स्वाधीनता की प्रतिध्वनियां। आलेख वसुधा बैनर्जी का होगा और प्रस्तुति होगी नवोदिता मिश्रा की। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इसी केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा एक और कार्यक्रम रात्रि 10 से, रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा। आनंद लीजिएगा इस कार्यक्रम का।

हमारी इस प्रातःकालीन सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे से। कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:31 का। आज आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी। प्रातः 8:30 पर आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रातः 9 बजे आप सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में।

0: कुछ भजन। आज के कलाकार होंगे सत्यभान शर्मा। सामयिक चर्चा का कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रातः 9:15 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कार्यक्रम आबोहवा सुनिएगा प्रातः 9:25 पर। कार्यक्रम बाल गोपाल का समय रहेगा प्रातः 9:30 का। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व स्तनपान सप्ताह और स्वस्थ परिवार स्वस्थ बचपन के विषय में। सुनिएगा वार्ता बाल कविताओं में उमड़ते घुमड़ते बादल। वार्ताकार होंगी संतोष देवी। और इसी कार्यक्रम में एक और चर्चा का विषय रहेगा खिलौना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रातः 10 से सुनवाएंगे कार्यक्रम पत्रिका साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। इस बार का ये कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विशेषांक होगा। साहित्यिक चर्चा होगी स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता से संबंधित। ओबी के अंतर्गत सुनेगा स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी साहित्य का अंतर संबंध विषय पर शिव प्रसाद की वार्ता। श्रृंखला साहित्य जिनका ऋणी है के अंतर्गत सुनेगा स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका। आलेख और स्वर होगा अरविंद कुमार का। देशभक्ति आधारित काव्यात्मक बातचीत आपको सुनवाएंगे दीपचंद वर्मा से। भेंट करता होंगे ओपी सिंह। सुनेगा कहानी स्वर्णिम भारत। कहानीकार होंगे डॉ शशि किरण प्रोफेसर के आर कॉलेज मथुरा। और इसी कार्यक्रम में आप सुनते हैं साहित्यिक समसामयिक गतिविधियां भी। कार्यक्रम में आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग होगा चंद्रिका कुमार का। संयोजन एवं प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की होगी। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय होगा दिन में 11 से। और 12:30 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रजलोकगीत जिसमें आज की कलाकार होंगी मृदुला। आप सुनेगा इनके गाए हुए कुछ मल्हार इस मास का गीत। ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। और 1:15 पर आपको सुनवाएंगे टीएन शर्मा की लिखी हुई झलकी सिफारिश। प्रस्तुति विमल अरोड़ा की होगी। 1:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ ही कार्यक्रम। और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। 3 हमारी पहली सभा का समापन होगा। सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा कार्यक्रम युवाणी के साथ संध्या 5:30 से। आज की बात का विषय रहेगा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती और पंडित रविशंकर प्रसाद शुक्ला जयंती। संध्या 6:15 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम ब्रज काव्य मकरंद। आज की कवित्री होंगी सुशीला शर्मा। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:30 का। और संध्या 6:50 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व स्तनपान सप्ताह। और इसी कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे अपने पसंदीदा लोकगीतों को मन भावन के अंतर्गत। 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी। और रात्रि 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा समाप्त होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाएं इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में गन्ने की फसल काफी तेजी से बढ़ती है। अधिक वर्षा और तेज हवा के कारण गन्ना अक्सर गिर भी जाते हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गन्ना गिरने से पैदावार में कमी आ जाती है क्योंकि गिरने के पश्चात बढ़वार कम हो जाती है। गन्ना थोथा पड़ने से हल्का पड़ जाता है। गिरे हुए गन्ने को कीड़े मकोड़े चूहे दीमक आदि भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गिरे हुए गन्ने में आंखों का फुटाव हो जाता है परिणाम स्वरूप गन्ना बीज योग्य नहीं रहता है और उसमें गुड़ और चीनी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसके अलावा टेढ़े मेढ़े गन्ने को काटने तथा ले जाने में भी काफी

0: दिक्कत आती है। ऐसे खेत की पेड़ी भी कमजोर होती है। इन सब से बचने के लिए गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है और ये मिट्टी का कार्य जुलाई या फिर अगस्त तक पूरा कर लेना चाहिए। मिट्टी फावड़े या मिट्टी चढ़ाने वाले हल से चढ़ाई जाती है। गन्ने का नीचे का लगभग 15 सेंटीमीटर भाग मिट्टी से दब जाना चाहिए। भविष्य में जहाँ तक हो सके गन्ने की बुवाई हमेशा पूर्व पश्चिम ही करें, जिससे कि हवा लाइनों के बीच होकर के आसानी से निकल जाए और गन्ना फसल पर हवा के दबाव न पड़ने से फसल गिरने से बच जाए। मिट्टी चढ़ाने के अनेक लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि फसल में मिट्टी चढ़ाने से गन्ने की जड़ें अधिक गहराई तक पहुंच जाती हैं और उन्हें मिट्टी का आधार अधिक मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप गन्ना गिरने से बच जाता है और पैदावार भी बढ़ जाती है। गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे गन्ने की फसल दिए गए खाद पानी का सही उपयोग कर पाती है। मिट्टी चढ़ाने से फसल में अनचाहा ब्यांत नहीं हो पाता है। अनचाहे ब्यांत से हमारा मतलब उस ब्यांत से है जो अगस्त और सितंबर माह से शुरू होता है और गन्ना सप्लाई के समय पोगलों के रूप में वो परिणत हो जाता है। ये पोगले न तो पेड़ योग्य होते हैं और न ही मिल में सप्लाई योग्य होते हैं। ये एक प्रकार से खरपतवार के समान होते हैं। मिट्टी चढ़ाने से भूमि की एक प्रकार से गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे भूमि में वायु का संचार सही होता है। मिट्टी चढ़ाने से गन्ने की पेड़ी के लिए किल्ले भी अधिक निकलते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ फसल की बधाई भी करना भी आवश्यक होता है। पहली बधाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में बांधना चाहिए और दूसरी बधाई पहली बधाई के एक महीने बाद अर्थात अगस्त के अंतिम या सितंबर के शुरू में करते हैं। बधाई करते समय ध्यान रखें कि एक तो बधाई कसकर न करें, दूसरे हरा अंगोला न बांधें, क्योंकि कसकर बांधने से गन्ना पतला रह जाएगा और हरा अंगोला बांधने से गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आज के कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत गीता रॉय और साथियों की आवाज में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मिस मैरी से। गीत की रचना की है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। आइए सुनते हैं गीता राय और साथियों की आवाज में मिस मैरी फिल्म का ये नगमा।

मिस मैरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, गीता रॉय और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म बारिश का ये गीत, इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और साथियों ने। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत सी रामचंद्र का।

चित्रलेखा फिल्म का ये गीत आपने सुना राजकुमारी की आवाज में। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था रोशन का। और आइए अब सुनते हैं

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में आपने सुना काला बाजार फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था ST बर्मन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मुकेश की आवाज़ में फिल्म आशिक से।

मुकेश की आवाज़ में आपने सुना आशिक फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत नशा मुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में खेलों का आयोजन, वाकाथन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होंगे।

0: इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
1: प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र संचालन को लेकर आज दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
1: तेल विपणन कंपनियों ने कल 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
0: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे और 1 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आयोग के दायरे में आने वाली समूह ग की सभी भर्तियों के लिए पीईटी अनिवार्य होगी। पीईटी का स्कोर 3 वर्ष यानी वर्ष 2028 तक मान्य रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन माह में राज्य के सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सावन के पहले सोमवार पर कल प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली कांवड़ यात्रियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज से लेकर कल तक कई मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में कल से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी 10 अगस्त तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ यात्रा से संबंधित जिलों में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में कल मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया

0: से बातचीत में उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
1: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई, वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं उसके हम सब लोग चिंतित हैं, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी जो उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कल वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पदक तालिका में देश को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के 8 खिलाड़ियों ने कल स्वर्ण पदक जीते। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, प्रिया खड़गस, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और पैरा एथलीट सुमन राणा ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश के कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 13 पर पहुंचा दी। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत हुए है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुनने बारे हमारे सभी श्रोतान को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबन को खूब खूब स्वागत आपके अपने कार्यक्रम ब्रज माधुरी में। और आज तो रविवार है, आप सब श्रोतान के संदेश झड़ी लग रही है जहाँ पे, तो जैसे वर्षा की झड़ी लगे वैसे आपके संदेशन की झड़ी लग रही है। और देखो भैया, सावन को आरंभ है चुको है, सावन के सोमवार के आयवे की भी समय आए गए है। सावन में मल्हार गवेंगी, खूब झमझम रिमझिम घटा बरसेगी, बरखा होएगी और सुहागन महिलान के जो हथेली पे रंग रांचेगी मेहंदी को, मंदिर देवालयन में खूब सुंदर झांकी होएगी, ठाकुर द्वारिकाधीश की घटान को दर्शन सबरे श्रद्धालु करेंगे, जमुना जी पे लोग दीपदान करेंगे और दर्शन करके अपने नेत्रन को अघाएंगे। तो भैया, सावन को जो महीना है ना, सबके मन में प्रेम उत्साह उमंग को भरे व्यवहारों है। आज हम बात करें अगर सावन की, तो सावन में जो त्यौहार हुए हैं वो ऐसा लगे हैं कि हमारे मन को प्रसन्न करके हमारे जीवन को नई तरंग दे जावे हैं। तो त्यौहार तो शुरू ही जाएंगे श्रावण के आते ही, तो श्रावण के आते अगर मल्हार की और कजरी की बात नए हुए तो फिर लगे कुछ बात अधूरी सी रह जाए है। तो अधूरी सी बात तो रहने वाली आज है ना, क्योंकि हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि सबके नाम आपके शामिल कर लेवें और कोशिश करके जितनी पसंद आपकी सुनवा सकें वो हमारे वास्ते तो कम ही है। तो भैया, अब सावन की बात तो है गई, अब बात करें आपके संदेशन की। तो आपको सबसे पहले संदेशों शामिल कर रहे हैं अपने जा कार्यक्रम में। जिस संदेश हमें प्राप्त भयो है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के हमारे श्रोता जिन्होंने जो संदेशा भेजा है, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश थे, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा को। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ ते जे संदेश आयो, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार को। और जे हमारे श्रोता हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से, सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। ये हमारे श्रोता हैं भैयाओं श्रीराधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा ते, शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और समस्त प्रजापति परिवार को। और संग ही संग जे हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास जिनको जो संदेश आयो है आसाम ते, और अगले श्रोतान को नाम हम लेवे जे हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मलोट ते, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। तो आप सबको सुनवावे हैं। और एक नाम और ले लेवे जे नाम हमें मिलो है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया।

राधिका प्रभा देवी और इनको पोता मास्टर अल कबीर को। एक और श्रोतान को श्रोता को संदेश आया कि वो है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हंसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मैं खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, संजीव कुमार जिंदल और समस्त परिवार को जिस संदेशों हमें प्राप्त भयो। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा आप सबकी पसंद पे सुनवावे हैं ओम प्रकाश डांगुर के गायब है जा लोकगीत को।

अभय आपने सुनो जा लोकगीत को ओम प्रकाश डांगुर के स्वर में। और सावन के महीना में जे बूरो खाइबे को आनंद सब लूटे हैं, तो आनंद तो आपने भी ले लिए होंगे जा लोकगीत को सुनवे के बाद। और अब सुने और पढ़ें अपने हमारे अगले अगले जो श्रोता हैं उन सब की फरमाइश को। तो जे जे फरमाइश करवे बारे हमारे श्रोता हैं जसवंत नगर जिला इटावा ते गोकर्ण सिंह ने दिव्या नैतिक संगीता विपिन कुमार कुमारी प्रीति युवान बेहान और इनके समस्त परिवारीजन। और जे हमारे श्रोता हैं राजू लवानिया पंकज कुमार अर्पण जी खेमजी पंचमलाल चतुर्वेदी खंदौली आगरा ते। और इनके बाद शामिल करें जे संदेश आयो है पलारी छत्तीसगढ़ ते नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूना राम देवांगन कृष्णा देवांगन को। और जे अगलो संदेश प्राप्त भयो भाटापारा छत्तीसगढ़ ते हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा को। जे हमारे श्रोता नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ते लक्ष्मी देवी गोस्वामी कीर्तनपुरी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी इनके संगे संग जुड़े भए हैं हमारे जे श्रोता अमलता संबरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश ते योगेश्वर सिंह भारतीय भैरव प्रताप सिंह भारतीय लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय प्रेमबाई भारतीय गोपाल

भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिता बाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता शामनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश से अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय और कोशाबाई भारतीय जी। हमारे श्रोता हैं पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ ते दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा जी। हमारे श्रोता हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, कुमार संजीव बायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षता देशमुख, जिन सबको संदेशों प्राप्त भयो। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा ते। और जी हमारे श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान ते धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार को संदेशों प्राप्त भयो। और जिनके बाद एक और संदेशों ले में फिर सुनवावेंगे आपके लोकगीत को जी। हैं ग्राम पंचायत बठेन पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ते अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बंछोर, इन सबके पसंद पर आपको सुनवाए रहे हैं माधुरी शर्मा के गाय भय जा लोकगीत को।

माधुरी शर्मा के सुर में अभी आपने सुनो जा लोकगीत को, आषाढ़ भैया उतरो सावन। और जा के बाद पढ़ें आपको संदेश को जल्दी जल्दी, क्योंकि समय तो भाग रहे हो है ऐसे जैसे कि पंख लग गए जाके। और ये हैं ग्राम ततारपुर बिसौली बदायूं ते डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सुनंदा यादव, मयंक कौशिकी और पुष्पा यादव। और जिनके बाद जे हमारे श्रोता हैं दत्रेंगी ते भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और सगरेस संगी साथी। जे हैं जरीपुरा हाथरस ते हमारे श्रोता सत्यवीर सिंह, मीरा सिंह, राजेश, आरती, रजनीश, राखी, तुलसी, राहुल, वर्षिता, गर्वित, कनिष्का, गौतम को जे संदेश हतो। और जे हैं बस स्टैंड लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ते राजेश यादव, रामोतार यादवीर सिंह, दीपक, राधिका, रामगोपाल यादव जी और इनके संगी साथी। जे हैं ग्राम फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और सगरी संगी साथी। ये हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ ते। और जे श्रोता जुड़े भए हैं राजनगर कांति निकेतन ते, कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्रा भाई रुद्र, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ ते रानी, मुकेश गुप्ता, नीलम, रश्मि गुप्ता, कुसुम और रूपा इलाहाबादी। इनके संग जी हमारे श्रोता हैं उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौली, प्याऊ, मथुरा ते। और ब्रजमाधुरी के हमारे अगले श्रोता को नाम लेवें जे हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर ते सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलावेन, राजेंद्र जी शाह को। और जे हमारे श्रोता हैं बस स्टैंड के आगे बड़ा चौक टोरिया मोहल्ला छतरपुर बुंदेलखंड ते बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, काजल, करण, अनुष्का, मोहिनी, गोलू, नीरज, छोटा भांजा, बड़ा भांजा, छोटी दीदी, बड़ी दीदी और समस्त बुंदेलखंड निवासी। आप सबको सुनवावे हैं घनश्याम शर्मा मधुप की गाय भई जालो गीत को।

हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए श्रोताओं को नाम अवश्य लेंगे। और जी हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव। और जी हमारे श्रोता जुड़े भए थे सादाबाद से मुरारी लाल प्रजापति, राजकुमारी जितेंद्र, धर्मेंद्र, भूपेंद्र, विमलेश, रामा, लक्ष्मी, निशा, गुंजन, आयुष, संजू, राशि, प्रिया, समस्त प्रजापति परिवार। और जे श्रोता हते वड़िंग खेड़ा पंजाब ते, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और ये श्रोता डोंगर गाँव, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ ते, राष्ट्रपाल

अब भाई आप सुन रहे घनश्याम शर्मा मधुब के स्वर में जा लोकगीत को, और वर्षा की ऋतु हम सबको आनंद देवे वारी हुए, आप सबको स्वस्थ रखे, आप अपनों ध्यान रखो और दूसरों को भी ध्यान रखो। जय संदेश के साथ, जय मनोकामना के साथ, जय इच्छा के साथ अब आपने कार्यक्रम को यहीं पे समेटे हैं। स्वीकारो हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को ही अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
1: वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ 1 माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते, भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी

0: वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति।

0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth

0: 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise." Also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, "Monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter," adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims too. TRP link being probed leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shined with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ, मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रातः के 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत आपके इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं कुदरत फिल्म का ये गीत। इस गीत को आवाज दी है सुरेश वाडेकर, आशा भोसले ने। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

सुरेश वाडेकर, आशा भोसले और साथियों के स्वर में आपने सुना कुदरत फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज

ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से लेकर 7:20 के मध्य प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक और वृत्त साहित्यिक कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से 6:30 तक रहेगा। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। और एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कार्यक्रम गीतांजलि में। अब कार्यक्रम के अगले गीत को आपको सुनवा रहे हैं

जो मुझ में नहीं।

सुमन कल्याणपुर के स्वर में आपने सुना गीत फिल्म का ये गीत। शब्द रचना प्रेम धवन की थी, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का ये अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

कोरा कागज़, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना दुनिया फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आया सावन झूमके से। गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ललकार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और साथियों के साथ। इस गीत को लिखा था कुलवंत जैन ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रातः के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सत्यभामा शर्मा के गाए हुए कुछ भजन।

तुलसीदास जी की इस रचना को आपने सुना सत्यभामा शर्मा के स्वर में। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं कुछ भजन, और आइए सुनते हैं ये अगली रचना मीराबाई की। स्वर दिया है सत्यभामा शर्मा ने।

और इसी भक्ति रचना के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अभी पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: ये सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसद के सामने रखा गया। इस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसने लगभग 10 राज्यों में विभिन्न पक्षों से मिलकर के उनकी राय जानने की कोशिश की, कितना ये देश के लिए सही है, कितनी इसमें चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया और जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में रखेगी। इस कमेटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया और लखनऊ में 3 दिनों तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और तमाम पक्षों के साथ बातचीत की। किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे संभव हो सकेगी और क्या वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इस महत्वाकांक्षी योजना के पक्ष में हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किस प्रकार आप इसको देखते हैं कि क्या देश को वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव जैसी किसी चीज की जरूरत भी है?
3: वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन जब संविधान लागू हुआ तो पहला इलेक्शन जो हुआ था 1952 में, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था क्योंकि राज्यों में भी चुनाव हुए और संघ के लिए भी चुनाव हुआ। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुछ विधानसभाओं ने बहुमत खोया मुख्यमंत्रियों ने, और देश में भी संसद का भी समय पीछे आगे हुआ और विधानसभाओं का भी समय पीछे आगे हो गया। ये बात समझने की है कि उस समय देश की आबादी लगभग 37 से 38 करोड़ थी और आज देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो अत्यधिक व्यस्त हो गई है, बहुत सारे नए मंत्रालयों का गठन हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य ये है कि कार्यपालिका को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त समय मिले। अभी क्या होता है कि कार्यपालिका पर जो लोग हमारे देश में आसीन होते हैं, तो जो हमारी एक तरह से कह लीजिए कि संविधान की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद हो जाता है और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्रियों का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष पर्यंत या 5 वर्ष के शासन काल में अन्य राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, तो इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्यों में लगातार कहीं न कहीं चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए कार्यपालिका को अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकाल करके प्रचार के लिए जाना पड़ता है और मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने दलों के लिए अन्य सभी राज्यों में आवागमन करना पड़ता है। इससे देश की जो विकास की योजनाएं हैं, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जो चर्चा का समय है और देश की योजनाओं को जितना गंभीर समय दिया जाना चाहिए वह संभव नहीं होता। तो कार्यकरण की दृष्टि से ये देखा जाता है कि जो कार्यपालिका है उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए नई

0: योजनाओं पर विचार करने के लिए, राष्ट्रोपयोगी योजनाओं को लाने के लिए और जो योजनाएं नहीं ठीक हैं उनको छोड़ने के लिए। इसके लिए गंभीर विचार विमर्श के लिए समय की आवश्यकता होती है। तो अब जब लोकतंत्र का आकार इतना बड़ा हो चुका है, तो उस स्थिति में देश के सामने कार्यपालिका का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, तो उस लिहाज से भी हमारा दुनिया के अन्य देशों से भी एक आर्थिक प्रतियोगिता जैसी स्थिति बनी रहती है। तो देश को संभालने के लिए कार्यपालिका को पर्याप्त समय मिले और एक विशेष समय खंड में ही संघ और राज्यों का चुनाव हो जाए, तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का खर्च भी बचता है और कार्यपालिकाओं को कार्य करने का समय भी मिलता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है और इसको होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आपका ये मानना है कि एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने इस संसदीय समिति ने इस बार पहली बार जो है वो मीडिया से भी एक पक्ष मानते हुए सुझाव लिए, तो जो इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं सांसद पीपी चौधरी, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि भी मीडिया जो है वो चूंकि एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो हम उससे भी विचार लेते हैं। एक जो प्रमुख विचार उसमें सामने आया, बल्कि यूं कहें कि सबने इस बात को लेकर के रजामंदी दिखाई कि आचार संहिता लगने की वजह से विकास की गति बाधित होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये था कि आखिर इसे किस तरीके से देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी राज्य में जल्दी सरकार गिर जाती है तो फिर एक जर्मन मॉडल की जिसमें चर्चा होती है कि जिसमें मौजूदा जो नेता होते हैं उनको हटाने से पहले नया नेता चुना जाता है सरकार गिरने के बाद, और जापानी मॉडल भी होता है, इस तरीके से कुछ मॉडलों की भी चर्चा हुई। ये एक बड़ी चुनौती निकल करके सामने आई, ये पूरी तरीके से सुझाव लेकर के भविष्य में कब लागू किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर जनता की राय जानी जा रही। तो अगर सरकारें बीच में गिरती हैं तो आपकी नजर में ये किस तरीके से इस मॉडल में काम आ पाएगा और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक किया जा सकेगा?
0: देखिए, भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी का एक दृष्टिकोण आया था, वो समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये संस्तुति दिया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में किसी विधायक का पद रिक्त हो जाता है, तो जो उपचुनाव होता है वो बची हुई विधानसभा के लिए ही होता है, तो जो विधायक चुना जाएगा वो केवल शेष विधानसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। अगर यही सिद्धांत पूरी विधानसभा पर लागू किया जाए, जैसे अभी बहुत कम ऐसी विधानसभाएं हैं जो मध्यावधि चुनाव के लिए जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में आपस में समझौता हो जाता है, बहुमत निर्मित हो जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाता है, तो विधानसभाएं चलती रहती हैं, तो उनको नेशनल डेट पर पहुंचना होगा। तो उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि दो ही एक विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं जो कभी को मध्यावधि के लिए जावें। एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये हो गई कि मान लीजिए कि संसद है और संसद में कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो शेष बचे हुए अवधि के लिए ही चुनाव किया जा सकता है, उसके बाद जो नेशनल डेट होगी उस पर चुनावों में सबको जाना होगा। तो ऐसा करने से मेरा मानना है कि 90% से अधिक एक राष्ट्र एक चुनाव की जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी और यह व्यवहार में लाने योग्य संस्तुति है।
1: जी।
0: अगर हम इस पर भी काम कर लें तो मची हुई अवधि के लिए ही जो नेशनल डेट्स होगा, टाइम टेबल फिक्स होगा, उस टाइम फ्रेम पर पहुंचने के लिए सबको जाना है और बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो शेष समय अवधि के लिए ही चुनाव किया जाएगा।
1: बिल्कुल। और ये जो 129वां संशोधन है संविधान का, इसको लेकर के जो समिति के सामने विचार आए, उनमें एक प्रमुख चुनौती या आपत्ति जिसे कहा जाए वो छोटे दलों को लेकर के है और पूरे देश भर में एक समान राजनीतिक मुद्दों और भावनाओं को लेकर के है कि जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर बंगाल का कोई विषय है जो राज्य का विषय है, वहां का प्रमुख मुद्दा है, और उत्तराखंड का कोई अलग मुद्दा है, गुजरात का अलग मुद्दा है, ये सभी प्रकार के मुद्दे एक किसी राष्ट्रीय मुद्दे के सामने फीके न पड़ जाएं, और दूसरी बात कि जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास धन बल है वो किसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को हाईजैक न कर लें, इस खतरे को कितना जायज मानते हैं आप?
0: देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जब हम विधानसभा का चुनाव करते हैं तो उसमें विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, और हमारी वही जनता लोकसभा के लिए भी चुनाव करती है, आजकल अलग अलग समय में करती है और वन नेशन वन इलेक्शन में एक समय में करेगी। तो मान लीजिए कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर विधानसभाओं के चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं और उन मुद्दों में जो हमारी जनता होती है वो निरशिर विवेक पूर्वक तीनों स्तरों पर आज भी मतदान करती है और कल भी मतदान करेगी। तो उस स्थिति में जो ये तर्क है कि छोटे दलों के अस्तित्व का प्रश्न है, तो विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उसी समय विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, तो आज भी हम देखते हैं कि प्रायः विधानसभा के जो मुद्दे हैं लोग विधानसभा के लक्ष्य को रख करके चुनाव करते हैं, संघ की बात होती है तो संसद को लक्ष्य करके चुनाव करते हैं, और अगर जो है पंचायती राज व्यवस्था है तो नगर निकाय हुए और ग्रामीण क्षेत्र हुए, इनके लिए चुनाव होता है, तो लोकल क्षेत्र

0: मुद्दों पे होता है। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जनता है आज भी तीनों स्तरों पर अलग अलग वही जनता चुनाव करती है, केवल
1: जी
0: समय खंड एक हो जाएगा। तो समय खंड एक हो जाने से क्या होगा कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा, नीतियां बनेंगी, नीति निर्माताओं को समय मिलेगा, नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होगी, जो प्रॉमिजेस किए जाते हैं चुनाव के घोषणा पत्रों में उन प्रॉमिजेस पर भी डिस्कशन होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर किया। और विशेष रूप से अब जबकि योजना आयोग की व्यवस्था खत्म होकर के नीति आयोग आ गई है, तो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संसद को भी समय मिलेगा कि इस पर विचार करे, और विधानसभाओं को भी समय मिलेगा कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकरण में क्या किया।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में ये एक व्यापक सुधार होगा, और यह सुधार जो है देश के लोकतंत्र के हित में होगा, क्योंकि जब चुनावों की कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो है जनता को ही बियर करना पड़ता है प्रकारांतर में,
1: जी
0: और जनता को भी ये अवसर मिलेगा कि जो चुनाव का समय है उस समय में कर लें, और तो चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी योजना होगी, और पूरा देश जो है नए परिवर्तन के लिए, नए जनादेश के लिए हर बार 5 वर्ष पे तैयार होगा।
1: बिल्कुल। और इस तरीके से जो विकसित भारत को लेकर के एक परिकल्पना
0: जी
1: रहती है
0: जी
1: उसमें बहुत
0: जी
1: बड़ा सहयोग रहेगा इस पूरी प्रक्रिया के
0: बिल्कुल
1: आसान होने से और लाखों करोड़ों के खर्च की बचत होने से। ब्रजेश जी,
0: जी
1: आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, धरती बचाने के लिए जंगल जरूरी। इस विषय पर आलेख और वाचन कर रही हैं कोमल मोदी।
5: चिड़ियों की मधुर आवाज, ताजा हवा की सनसनाहट, बहती नदी का शोर और हरियाली की चादर ओढ़े बेहद सुंदर और आकर्षित करती है हमारी धरती माँ। भगवान की बनाई गई सबसे अद्भुत कलाकृति, जो जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है। धरती पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन मानव के गलत कार्यों के कारण बिगड़ रहे हैं। अनुकूल वातावरण की कमी के कारण बहुत से जंगली जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। प्राचीन समय में लोग विनाशकारी कार्यों में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें धरती बचाने, प्रदूषण और पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। जनसंख्या विस्फोट के बाद लोगों ने आधुनिक जीवन शैली और आसान जीवन के लिए शहरों और उद्योगों का विकास करना शुरू किया। औद्योगिकीकरण के लिए लोगों ने एक निश्चित सीमा से बढ़कर धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोग जंगलों के उन्मूलन में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप जंगली जानवरों का विलुप्त होना, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे बढ़ गए। ओजोन परत में छेद, समुद्री स्तर का बढ़ना, एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में बर्फ का पिघलना आदि ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं। इस तरह जंगलों की अवैध कटाई ने धरती को काफी नुकसान पहुंचाया है। धरती को बचाने के लिए हमें वनीकरण और पुनः वृक्षारोपण के माध्यम से जंगलों को बढ़ाना जरूरी है। जंगलों के कटने से एक तरफ वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। देश के लगभग हर राज्य में विकास और अन्य गतिविधियों के नाम पर जंगलों की कटाई की जा रही है। उत्तराखंड में बिजली के पावर प्रोजेक्ट के लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। पहाड़ों को खोदकर सुरंगें बनाई जा रही हैं। जंगलों को काटने से पहाड़ियां पूरी तरह से नग्न हो चुकी हैं। जंगलों की कटाई से मुद्रा का क्षरण हो रहा है, जिसके कारण भूस्खलन हो रहा है। इस तरह धरती ने पहले ही अपने विनाश के संकेत दे दिए हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूभाग पर 33% जंगल होना चाहिए। भारतीयों ने जंगलों और वृक्षों की सुरक्षा

के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वर्तमान में पर्यावरणविद द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में चिपको आंदोलन शुरू किया गया, जिससे पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं वन माफियाओं द्वारा जंगल काटने के समय वृक्षों से लिपटकर आरी चलाने से रोकने का प्रयास करती थी। इसी प्रकार कर्नाटक में आम्पिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाए गए थे। इस तरह धरती को बचाने के लिए जंगलों के संरक्षण हेतु कई सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जंगलों को संरक्षण प्रदान किया है, जो कि धरती को बचाने हेतु सक्रिय है। विश्व वन्य जीवन कोष 1960 में पृथ्वी रक्षा कार्यक्रम, यूनेस्को का मनुष्य एवं जीवन मंडल कार्यक्रम 1970 में। धरती पर मानव जीवन लंबे समय तक तभी चल सकता है जब हम जंगलों का संरक्षण करेंगे। अगर जंगलों की कटाई यूं ही होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। जंगलों की अंधाधुंध कटाई धरती पर विभिन्न जानवरों और पक्षियों के अस्तित्व को संकट में डाल रही है। वनवासियों का जन्मजात जुड़ाव जंगल, जमीन और जल से रहा है, इसलिए उन्हें जंगल संपदा का रखवाला, रक्षक बनाया जाए। हर शिक्षण संस्थान, हर सरकारी दफ्तर के प्रांगण में वृक्षारोपण किया जाए। जंगल संरक्षण के कानून और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इस प्रकार हमारी धरती को बचाने के लिए जंगल जरूरी है। प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखा है, तरुओं के सुंदर गीतों से मन शीतल निर्मल होता है, सानिध्य मिले हरियाली का तो जीवन सुखमय होता है, ईश्वर दर्शन से शांति मिले वह वन दर्शन से होता है। आओ इसका विस्तार करें, मानव जीवन की ज्योति है जंगल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं फराह खान।

0: बच्चों जय हिंद
1: जय हिंद।
2: हमारे स्टूडियो में आज आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह इस बार भी बाल गोपाल कार्यक्रम में आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं नई नई बातें, जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। बच्चों मैं हूँ आपके साथ फरहा, तो चलिए करते हैं आपसे कुछ मस्ती भरी बातें। बच्चों आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
3: दीदी आज हम आपको पोयम, कविता, गीत, चुटकुले ये सब सुनाने वाले हैं।
2: अच्छा तो सबसे पहले कौन आएगा?
4: मैं दीदी।
2: नाम बताइए अपना।
4: देव।
2: क्या सुनाने वाले हो?
4: पोयम।
2: सुनाइए।
4: आसमान की सौंपाई ऊपर से नीचे उतरी, नए नए उपहार सजाकर सपनों का संसार बनाकर, खेल खिलौने और मिठाई सब बच्चों को देने आई। दीदी मेरे को एक और पोयम सुनानी है।
2: चलिए सुनाइए।
4: रे निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मुझे वाला, तेज नुकीले दांतों वाला, सबका दिल दहलाने वाला, करो करो तो देर, भागो भागो आया से।
3: दीदी अब मैं सुनाऊंगी।
2: अपना नाम बताइए।
3: गुनगुन।
2: क्या सुनाओगी गुनगुन?
3: एक पोयम।
2: सुनाइए।
3: गर्मी आई, गर्मी आई, घर घर में है पंखा, लाए सबको पास बुलाता, पंखा मीठी नींद सुलाता, पंखा ठंडी हवा खिलाता, पंखा गर्मी दूर भगाता, पंखा।

0: दीदी एक और सुनाऊंगी मैं।
1: अभी एक और सुनाएंगी आप?
0: जी दीदी
1: सुनाइए।
0: डब्बू जी की तोंद बड़ी, चीटी उस पर एक चढ़ी, शोर मचाया डब्बू राम, चीटी नीचे गिरी धड़ाम, फूट गया चीटी का सर, डब्बू भाग गया डर कर।
1: तो चलिए अब हमें सुनाने के लिए कौन आने वाला है?
2: हम।
1: अरे अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है फहद।
1: फहद आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैं आपको सुनाऊंगा पोयम।
1: चलिए सुनाइए।
2: जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा।
1: और अब कौन आ रहा है?
3: दीदी मैं सुनाऊं?
1: अपना नाम बताइए।
3: दीदी मेरा नाम रिया है।
1: रिया क्या सुनाओगी आप हमें?
3: एक कविता सुनानी है।
1: सुनाइए।
3: तितली उड़ी बस में चढ़ी, बस में उसको सीट न मिली, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश।
1: अरे वाह, आज रिया ने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई।
3: दीदी दीदी एक पहेली मैं भी पूछूंगी।
1: अपना नाम बताइए।
3: दीदी मेरा नाम अनु।
1: पूछिए।
3: एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पे पैसा।
1: बच्चों मुझे तो इसका आंसर पता है, क्या आपको पता है इसका आंसर?
3: हाँ।
1: नाम बताइए अपना।
4: माय नेम इज प्रतीक्षा गौतम।
1: बताइए क्या है इसका आंसर?
2: मोर।
1: मोर वेरी गुड। बच्चों अब आपको सौम्या एक पोएम सुनाएंगी।
4: टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ वेरी वंडर व्हाट यू आर, अब वर्षा वर्षो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई।
1: सौम्या ने तो बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। और अब कौन आएगा?
5: दीदी मैं।
1: मैं अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम अदनान है।
1: अदनान क्या सुनाने वाले हैं?
5: कविता।
1: सुनाइए।
5: माँ परिया कैसी होती है, माँ बोली सुंदर होती है, दो पंखों वाली होती है, प्यारी बेटी सी होती है, कभी कभी नीचे है आती, बच्चों के संग गाना गाती, कभी मिठाई लेकर आती, कभी खिलौने देकर जाती, मैंने कहा बुलाओ माँ, मुझको भी दे जाए माँ, मांगू मैं उनसे क्या क्या, ज्ञान मुझे दे जाए माँ, आओ परियां जो मैं मांगू वह दे जाओ, तुम्हें बुलाऊं तब तुम आओ, मुझको खुशियां देकर जाओ।
1: बच्चों सोनाक्षी अब आप सभी को एक बहुत सुंदर भजन सुनाने वाली हैं, आप तैयार हैं?
3: जी दीदी।
1: चलिए सुनाइए।

चलिए बच्चों, मस्ती तो बहुत हो गई, अब करते हैं कुछ काम की बातें। बच्चों, क्या आप जानते हैं हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विशेष स्तनपान सप्ताह मनाया

मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है विशेष स्तनपान सप्ताह, स्वस्थ परिवार स्वस्थ बचपन। प्यारे बच्चों, जीवन के शुरुआती दिनों में माँ का दूध शिशु के लिए सबसे उत्तम और

0: के लिए सबसे उत्तम और संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें वे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसे अनेक संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जन्म के पहले 6 महीनों तक शिशु को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। इसके बाद पूरक आहार के साथ स्तनपान 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। इससे बच्चे का विकास बेहतर होता है और माँ के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। एक स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होता है। इसीलिए आइए इस विशेष स्तनपान सप्ताह पर हम सभी यह संकल्प लें कि माताओं को सहयोग देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और स्तनपान के महत्व का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों, इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ता है बाल कविताओं में उमड़ते घुमड़ते बादल। वार्ताकार हैं संतोष देवी।
1: बाल कविताओं में उमड़ते घुमड़ते नाचते गाते बादल। बाल कविताएं बाल साहित्य का वह स्वरूप है जो बच्चों की मनोरंजन की आधारशिला का निर्माण करता है। बाल कविताएं बाल साहित्य का वह स्वरूप है जो बच्चों की मनोरंजन की आधारशिला का निर्माण करता है। इन बाल कविताओं में मनोरंजन के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी दी जाती है, उन्हें सूचनाओं से अवगत कराया जाता है। बाल कविताएं बाल साहित्य का वह स्वरूप है जो बच्चों की मनोरंजन की आधारशिला का निर्माण करता है। इन बाल कविताओं में मनोरंजन के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी दी जाती है, उन्हें सूचनाओं से अवगत कराया जाता है, उनका ज्ञान वर्धन किया जाता है, उन्हें नैतिक ज्ञान और चारित्रिक गुणों की शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को सद्भाव और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चा इन कविताओं के माध्यम से विविध रोचक गतिविधियाँ भी करते हैं, उन्हें याद भी करते हैं, साथ ही उन कविताओं में छिपी अनेक जानकारियां भी प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन के व्यवहार को सदैव सफलता की ओर आकर्षित करती है। यूं तो बाल कविताओं में बाल रचनाकारों द्वारा सदैव ही अनेक विषयों का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन बादल के रूप को बड़ी मस्ती और आनंद के साथ प्रस्तुत कर बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन रचनाकारों की प्रमुख देन रहा है। बादल और बरसात से बच्चा बहुत ही अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि बादल सिर्फ बूंदे नहीं लाता अपितु वह उन बूंदों में एक आनंद और उल्लास लाता है। गर्मी से थके हुए बच्चे जब बरसात की पहली बूंद को अपने शरीर पर गिरता हुआ पाते हैं तो उन्हें आनंद आता है, वह मस्ती में खेलने लगते हैं, झूमने और नाचने लगते हैं। कवियों ने अपनी बाल कविताओं में अनेक प्रकार के प्रयोग कर बादल के स्वरूप को बहुत ही नटखट और मस्ताना बना दिया है। वह बादल को अलग अलग रूप और रंगों में देखते हैं, वह बादल को बुलाते हैं, वह बादल के साथ खेलते हैं। जब बरसात नहीं होती तो बच्चों को लगता है बादल हमसे नाराज हैं, रूठे हुए हैं। सूरज की गर्मी को रोकने के लिए वह बार बार बादलों को बुलाते हैं। पुराने समय में आसमान में बादलों का छाना बच्चों को आनंद से विभोर कर देता था, क्योंकि जब बरसात आती थी तो बच्चे घूम घूम कर नाच नाच कर गाना गाते थे, इंदर राजा पानी दे गुड़धानी दे। अर्थात बादलों का महत्व शुरू से ही बच्चों के मन को प्रभावित करता रहा है। भिन्न भिन्न रचनाकारों ने बादलों के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। बादल किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार बरसते हैं, बादल किस प्रकार उमड़ते घुमड़ते हैं और उनमें किस प्रकार बिजली चमकती है, और वह किस प्रकार पानी से चारों ओर तपती धरती को सुंदर बना देते हैं, उन्होंने ध्वन्यात्मकता का प्रयोग करते हुए अपनी कविताओं को सजाया है। कवि सभा मोहन अवधिया स्वर्ण सहोदर ने अपनी कविता बादल आए में बहुत ही सुंदर ढंग से बादलों का रोचक वर्णन किया है। उनकी कविता इस प्रकार है। करते घम घम बिजली चमकाते चम चम चम, हल्ला गुल्ला करते कड़कड़ कुछ गाज गिराते तड़ तड़ तड़ तड़, करतूत अनोखी अपनाए ये मन मौजी बादल आए। बाल रचनाकार शकुंतला सिरोठिया ने भी अपनी कविता बादल आया में प्रकृति के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए बच्चों के मन को बांधने का प्रयास किया है। उनकी कविता बादल आया इस प्रकार है।

के पर्वत चोटी चूम के इंद्रधनुष का पहने हार ले आया वर्षा की धार। मेंढक राजा मगन हुए झींगुर के सुख स्वप्न हुए, कजरी की धुन आती है नन्ही चिड़िया गाती है। बाल कवि निरंकार देव सेवक ने बाल कविताओं को अपनी कल्पना शक्ति एवं भाव व्यंजना से एक विशेष दिशा प्रदान की है। उन्होंने कविता से बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन किया है, साथ बच्चों के मन को प्रभावित करने वाली कविताओं की रचना की है, जिसमें बरसों राम कविता उनकी बादलों पर लिखी एक शानदार कविता है, जिसके शब्द बच्चों के हृदय पर सहजता से अंकित हो जाते हैं, जो बच्चों में रोचकता के साथ उन्हें गाने को प्रेरित करती हैं। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, वही उन्होंने इसी कविता को नकारात्मकता से सकारात्मकता बनाते हुए बहुत ही रोचकता से प्रस्तुत किया है। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मरे न फाके से, उमड़ घुमड़ कर गगन घिरो और मूसलाधार गिरो, चमकाओ बिजली चमचम गरजो खूब कड़ाके से, बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मरे न फाके से। इसी प्रकार लाल जगदलपुरी ने मौसम आया पानी का कविता में हरियाली का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बादल जब आते हैं तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। कवि का मन कहता है कि यह हरियाली नहीं बल्कि यह जीवन की खुशहाली है। उसने बादलों को जीवन का प्रतीक माना है। जब बादल आकाश में आते हैं तो किसानों के पांव संभल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, खेतों में चहल पहल हो जाती है, पशु पक्षी मस्त और विभोर हो जाते हैं, वे खुशी से नृत्य करने लगते हैं, और यह सब खुशहाली सिर्फ और सिर्फ बादलों के द्वारा होती है। इस कविता में लाल जगदलपुरी ने बादल की बरसात का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बादल गरजे धूम मची, गर्मी बीती जान बची, आंखों में हरियाली है, बातों में खुशहाली है, बूंदों का स्वर ऐसा है जैसे गुड्डी रानी का, मौसम आया पानी का। मतवाले बादल कविता में रचनाकार गोस्वामी जी ने बादलों को अनोखी बात करने वाला कहा है। जब काले घने बादल आसमान में छाते हैं तो सूरज को छिपा लेते हैं, दिन में रात कर देते हैं। उनकी कविता इस प्रकार है। आसमान पर छाए बादल, गहरे बादल काले बादल, दल बांधे मतवाले बादल, सूरज को दी मात अचानक, दिन में कर दी रात अचानक, कर अनोखी बात अचानक। वहीं रचनाकार अब्दुल मलिक खान ने बादलों के आने पर बड़ी खुशी जताई है। उन्होंने अपनी कविता दिन प्यारे गुड़धानी के माध्यम से बताया है कि जब बादल आते हैं तो गुड़धानी के दिन आ जाते हैं। उन्होंने बादल और बरसात का बड़ा ही रोचक चित्रण अपने शब्दों से किया है। तान तड़ातड़ पानी पड़ता पड़ पड़ पड़, तरपट तरपट टीन बोलते सूखे पत्ते खड़ खड़ खड़, ठुमक ठुमक झरना ठुमका इटलाती जलधार चली, खेतों में हरियाली नाची फर फर फर मस्त बयार चली, टप्पर टप्पर छप्पर छप्पर टपक रही है टप टप टप, त्योहारों का मौसम आया हलवा खाएं गप गप गप, झिरमिर झिरमिर मेवा बरसे फूल बरसते पानी के, कागज की नावें ले आई दिन प्यारे गुड़धानी के। बादल को देखकर प्राचीन कवियों यथा कालिदास, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और अन्य कवियों ने बादल पर बहुत ही सुंदर प्रयोग और अलंकारों से उसे विभूषित किया है। बच्चों की कल्पनाओं में भी ऐसे अलंकरण अनेक बार दिखाई देते हैं। कल्पनाओं के साथ साथ कविता में रोचकता का ऐसा सटीक उदाहरण पद्मा चौंगा गांवकर की कविता बजे नगाड़े बरसे मोती एक अद्भुत कविता है, जिसमें बिंब प्रतीक और अलंकारों का सुंदर समायोजन किया गया है। आसमान में बजे नगाड़े या बुढ़िया दलती सिंगाड़े, या फिर भूरे काले बादल जोर जोर से पढ़े पहाड़े, झरझर झर बूंदें बरसे मोती बुढ़िया अपनी चकिया धोती, या फिर छोटी बदली कक्षा में पिटकर है रोती। जहाँ बादल ज़्यादा बरसात करते हैं वहाँ बच्चे खुला मौसम चाहते हैं, लेकिन जहाँ बादल कम बरसात करते हैं, जहाँ रेगिस्तान है और कई बार मौसम सूखा निकलने लगता है और बरसात नहीं होती, वहाँ पर रहने वाले बच्चों का मन करता है कि शायद इस बार बादल भैया हमसे रूठ गए हैं, हमसे नाराज हैं, और इसी कारण वे हमारे यहाँ बरस कर नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर अंजीव अंजुम की कविता बादल भैया इसी प्रकार की कविता है, जिसमें बच्चा बादलों को आमंत्रित करता है, उनसे उल्हाना देकर कहता है कि तुम बिना बरसात किए बिना पानी बरसाए क्यों जा रहे हो, अब तो मान भी जाओ। साथ इस कविता में बरसात ना आने का कारण भी कवि

0: पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बताया है। बरसात लाने के लिए पेड़ लगाने का संदेश भी इस कविता में बच्चों को दिया गया है। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति बच्चों में जागृति लाने के लिए यह कविता बहुत उपयोगी है। डॉक्टर अंजी वंजुम के शब्दों में, बादल भैया दौड़ रहे क्यों, गुस्से में मुँह ऐंठ कर, सावन सूखा निकल रहा क्यों, जाते नीर समेट कर। पहले तो टप टप बूंदों के संग संग झूमे आते थे, रिमझिम रिमझिम उमड़ घुमड़ भर भर बादल भर भर जल बरसाते थे, पर तुम सरपट दौड़ लगाते क्यों, घोड़े पर बैठ कर, बादल भैया दौड़ रहे क्यों, गुस्से में मुँह ऐंठ कर। हिंदी बाल साहित्य में बादलों के विविध रूपों और चित्रों का वर्णन सभी कवियों ने अपनी अपनी कल्पना शक्ति और भावों में बांध कर किया है। उन्होंने बादल और बच्चों के अंतर संबंध को अपने अपने शब्दों में बड़ी अनूठेपन से अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। अंततः कहा जा सकता है, बाल कविताओं में बादल बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख विषय रहा है। इंदर राजा पानी दे से लेकर तरह तरह की कविताएँ बच्चों के मनोरंजन और सीख देने के लिए लिखी गई हैं। इन कविताओं में मेल जोल की भावना के साथ साथ पर्यावरण के प्रति समचेतना का भी संचार किया गया है। उमड़ते घुमड़ते नाचते गाते बादलों के प्रति विभिन्न बिंब प्रतीक और अलंकारों का प्रयोग करते हुए बाल कविताएं अपनी श्रेष्ठता के साथ साथ बाल साहित्य के कोष को समृद्ध कर रही हैं। धन्यवाद
1: प्यारे बच्चों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ता थी बाल कविताओं में उमड़ते घुमड़ते बादल। वार्ताकार थी संतोष देवी। बच्चों, आप सभी को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। खिलौने हमें खुशियाँ देते हैं, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाते हैं और नई नई बातें सीखने में मदद करते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि खिलौनों के माध्यम से भी हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं? जब हम ऐसे खिलौने चुनते हैं जो लकड़ी, कपड़े, बांस या दूसरी प्राकृतिक सामग्री से बने हों, तो हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वहीं बहुत अधिक प्लास्टिक के खिलौने जब टूट जाते हैं और इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो वे लंबे समय तक मिट्टी और प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और अच्छी आदत है अपने खिलौनों की देखभाल करना। अगर खिलौना थोड़ा टूट जाए तो जहाँ तक संभव हो उसे ठीक करके दोबारा इस्तेमाल करें। जिन खिलौनों से आप अब नहीं खेलते, उन्हें किसी छोटे भाई बहन, दोस्त या ज़रूरतमंद बच्चे को दे दें। इससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आएगी और चीज़ों का सही उपयोग भी होगा। बच्चों, पर्यावरण की रक्षा केवल बड़े बड़े कामों से नहीं होती, छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना और अपने खिलौनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना। तो आइए बच्चों, आज हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने खिलौनों की कद्र करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं फेंकेंगे, जहां संभव होगा पर्यावरण के अनुकूल खिलौने चुनेंगे और अपनी धरती को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने में अपना योगदान देंगे। बच्चों, याद रखिए, आज की अच्छी आदतें ही कल के बेहतर भविष्य की नींव बनती हैं। स्वच्छ पर्यावरण, सुंदर संसार, यही है हम सबका अधिकार। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: प्यारे बच्चों, अभी आपने ये गीत सुना और अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का और हमारे कार्यक्रम का पता बताने का। तो जाते जाते बता देते हैं कार्यक्रम का पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003।
1: बच्चों जय।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम पेश किया फरहा खान ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। आज के इस कार्यक्रम को आलेख, स्वर और प्रस्तुति सहयोग दिया है चंद्रिका कुमार ने। संयोजन एवं प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की है। आइए सुने साप्ताहिक पत्रिका भंगिमा।
1: साहित्यिक पत्रिका भंगिमा, भंगिमा, भंगिमा,
2: भंगिमा। नमस्कार, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन की साहित्यिक पत्रिका भंगिमा के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका कुमार। श्रोताओं, अगस्त का महीना भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में साहित्य की विशेष भूमिका रही है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि ये विचारों, मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का भी महान अभियान था। इस जन जागरण में हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता ने अद्वितीय भूमिका निभाई। उस समय कवियों की लेखनी में जन जन में देशभक्ति का संचार किया। साहित्यकारों ने अपने शब्दों से स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित की और पत्रकारों ने सत्य, अभिमान तथा राष्ट्रीय चेतना का निर्भीक स्वर बनकर जनमानस का मार्गदर्शन किया। इस विशेष प्रस्तुति में हम स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता के संबंधों पर चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर संबंध को समझेंगे, उन साहित्यकारों को स्मरण करेंगे जिनके प्रति भारतीय साहित्य आज भी ऋणी है, देशभक्ति से उत्प्रोत काव्यात्मक बातचीत सुनेंगे और डॉक्टर शशि किरण की कहानी स्वर्णिम भारत का आनंद लेंगे। आइए शब्दों की उस विरासत को नमन करें जिसने भारत की आजादी के संघर्ष को स्वर दिया और आज भी हमें राष्ट्र प्रेम, एकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित किया। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़

0: ते समय हमारी दृष्टि प्रायः उन वीर सेनानियों पर जाती है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, किंतु इस संघर्ष का एक और सशक्त पक्ष था, वह था हिंदी पत्रकारिता। यदि क्रांतिकारियों के हाथों में साहस था तो पत्रकारों की लेखनी में वह चेतना थी जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन का कठोर नियंत्रण था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, समाचारों की जांच होती थी और राष्ट्रवादी विचारों को दबाने का हर संभव प्रयास किया जाता था। लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी लेखनी को जन जागरण का सबसे प्रभावशाली माध्यम बना दिया। सन 1826 में प्रकाशित उदंत मारतंड ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। आगे चलकर प्रताप, आज, अभ्युदय, भारत मित्र और कर्मवीर जैसे समाचार पत्रों ने देशवासियों के मन में स्वाधीनता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त किया। इन पत्रों के प्रत्येक अंक में केवल समाचार नहीं होते थे बल्कि उनमें स्वतंत्र भारत का स्वप्न भी अंकित होता था। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का ये संबंध अत्यंत गहरा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय आंदोलन का दीप प्रज्वलित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों से जोड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अन्याय के विरुद्ध निर्भीक पत्रकारिता का आदर्श प्रस्तुत किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं और संपादकीय लेखों के माध्यम से देशभक्ति को जनमानस की भावना बना दिया। अंग्रेजी शासन ने अनेक बार समाचार पत्रों को बंद किया, संपादकों को जेल भेजा और आर्थिक दंड भी दिए, किंतु सत्य की ये मशाल बुझ नहीं सकी। हिंदी पत्रकारिता ने ये सिद्ध कर दिया कि विचारों की शक्ति किसी भी साम्राज्य से अधिक प्रभावशाली होती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, तब उन पत्रकारों और साहित्यकारों को स्मरण करना हमारा नैतिक दायित्व है जिनकी लेखनी ने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा, गति और जन समर्थन प्रदान किया। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा हिंदी पत्रकारिता के योगदान के बिना अधूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन के हिंदी साहित्य के अंतर संबंध पर प्रकाश डालते हुए आप हैं KR कॉलेज मथुरा के सहायक आचार्य शिव प्रसाद।
1: भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य की विशेष भूमिका रही है, जिसमें हिंदी साहित्य भी अग्रणी है। 1857 के सैनिक विद्रोह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापक शुरुआत होती है। इसे हम हिंदी साहित्य में कालखंड के नजरिए से देखें तो यह भारतेंदु युग या आधुनिक युग है। भारतेंदु युग से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी के तमाम साहित्यकारों ने कहीं सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे हैं तो कहीं अपनी लेखनी के माध्यम से हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते रहे हैं। इन रचनाकारों में दो स्वर दिखाई देते हैं। एक तरफ तो ये अंग्रेजों के शोषण के तमाम आधारों को हमारे सामने अभ्यक्त करते थे, दूसरी तरफ ये हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत करते थे। भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में हिंदी साहित्यकारों की भी व्यापक भूमिका रही है। हिंदी साहित्य में यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर को देखें तो यह लगातार बदलता रहा है। भारतेंदु युग में जहां हास्य और व्यंग की शैली के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु मंडल के तमाम रचनाकारों ने अंग्रेजों के शोषण के तमाम आधारों को अपने नाटक के माध्यम से अभ्यक्त किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों तथा कुप्रथाओं को अपने निबंधों तथा पत्रकारिता के माध्यम से हम तक अभ्यक्त किया है। द्विवेदी युग के रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त सरीखे रचनाकारों ने हमारे भीतर अतीत के प्रति तथा अपनी संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरवबोध उत्पन्न किया तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। जहां अंग्रेज लगातार हमारे भीतर हीनता बोध पैदा कर रहे थे, वहां हमारे रचनाकारों के सामने ये चुनौती थी कि हम अपने देश के लोगों के भीतर कैसे राष्ट्र प्रेम और स्वाधीनता की चेतना जागृत कर सकें। मैथिली शरण की यह पंक्ति बहुत ही चर्चित हुई अपने समय में। भारत भारती की ये पंक्तियां उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के जुबान पर रहती थी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी।

0: आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के समय में बहुत ही चर्चित थी। मैथिली शरण गुप्त के अलावा भी बहुत सारे रचनाकारों ने सक्रिय रूप से अपनी लेखनी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति चलाई है, जिसमें शिवमंगल सिंह सुमन, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि शामिल हैं। इनके अलावा और भी रचनाकार ऐसे भी रहे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल होने के कारण जेल भी गए हैं। वे दोहरी भूमिका निभा रहे थे। एक तरफ तो अपनी लेखनी के माध्यम से हम भारतीयों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना भर रहे थे, दूसरी तरफ वे खुद तमाम आंदोलनों में शामिल हुए और जेल भी गए, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भीतर जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भारतेंदु हरिश्चंद आदि रचनाकारों ने स्वतंत्रता की भावना जागृत की और हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही अंग्रेजों ने हिंदी के तमाम रचनाओं पर बैन भी लगाया और देशद्रोह का मुकदमा भी उन पर चलाया। वर्तमान समय में उपलब्ध शोधों के आधार पर ये माना जाता है कि उस समय लगभग 1391 हिंदी की रचनाओं को अंग्रेजों ने बैन किया था और उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया था।
1: अब प्रस्तुत है श्रृंखला साहित्य जिनका ऋणी है। इस कड़ी में हम स्मरण करेंगे उन हिंदी साहित्यकारों के अमूल्य योगदान का जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को नई चेतना, नई दिशा और जन जन में राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आज का विषय है स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका। आलेख एवं स्वर है अरविंद कुमार के।
2: श्रोता, स्वाधीनता आंदोलन भारतीय इतिहास का वो कालखंड है जो स्वयं में त्याग, बलिदान, गौरव, आत्मसम्मान और सबसे अधिक शहीदों के लहू को समेटे हुए है। स्वाधीनता के इस महायज्ञ में भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपनी क्षमता अनुसार अपने आप को आहूत किया है। इसी क्रम में कवियों, लेखकों एवं पत्रकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्रांतिकारियों से लेकर जनमानस को न केवल भारत मां की रक्षा के लिए प्रेरित किया बल्कि उनमें ऊर्जा का संचार भी किया। श्रोताओं, देश की अनेक भाषाओं सहित हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने पूरे जोश के साथ अपनी कलम की धार का परिचय दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के जिस आधुनिक युग का आरंभ किया उसकी जड़ें स्वाधीनता आंदोलन से ही जुड़ी हुई थी। भारतेंदु एवं भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने उसकी चेतना को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। वर्ष 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाने एवं उसके कारणों को उजागर करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली में भारत दुर्दशा नाटक लिखा, जिसमें असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था एवं देश की दुर्दशा स्पष्ट दिखाई देती है। उसमें भारतेंदु ने लिखा है, रोवहु सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। श्रोताओं, पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, सत्य निष्ठा एवं अहिंसा के प्रति आग्रह और ग्रामीण जीवन तथा स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्र उकेरते हुए कथा सम्राट प्रेमचंद ने वर्ष 1924 में रंगभूमि नामक उपन्यास की रचना की। वैसे तो प्रेमचंद का पूरा साहित्य भारत के आम जनमानस की गाथा है, किंतु रंगभूमि जैसे उपन्यासों को पढ़कर देश की तत्कालीन आवश्यकताओं एवं आशाओं की पूर्ति के लिए संकीर्णता और वासनाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से देश सेवा की आवश्यकता आज भी हम महसूस कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक आदि कवियों ने स्वाधीनता हेतु अपनी कलम की धार खूब पैनी की। भारत भारती काव्यकृति में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं,

0: जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान है। वही कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से शायद ही कोई हिंदी प्रेमी अपरिचित हो। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भारती जय विजय करें आज भी जब हम गुनगुनाते हैं तो सचमुच देशभक्ति का माहौल स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इसी क्रम में सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी जैसी कविताएं सृजित कर अंग्रेजों को ललकारने का काम किया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे में कविवर रामधारी सिंह दिनकर भी कहां खामोश रहने वाले थे। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले रणबांकुरों की शान में उन्होंने लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुंड वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रृंखला साहित्य जिनका ऋणी है और अब प्रस्तुत है देशभक्ति आधारित काव्यात्मक बातचीत जिसमें देश प्रेम राष्ट्रभाव और काव्य के माध्यम से उन वीरों को स्वर दिया गया है जो देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर होते हैं। भेंट दाता है दीपचंद वर्मा और भेंट करता है ओपी सिंह।
2: एक जो सैनिक होता है उसकी शपथ ये है, सैनिक की शपथ, जब तक मेरे लहू का कोई कतरा बाकी है, जब तक मेरे लहू का कोई कतरा बाकी है, जब तक मेरे वतन पर कोई खतरा बाकी है, सौगंध धरा की पिताश्री, सिंह साहब वो पिताई से मुखातिब हो रहा है सिपाही, सौगंध धरा की पिताश्री, लौट के फिर फिराऊंगा ऊंचा रहे तिरंगा, मैं ध्वज स्तंभ बन जाऊंगा।
3: क्या बात,
2: मैं ध्वज स्तंभ बन जाऊंगा। सिंह साहब आगे वो माँ की तरफ इशारा करके बोलते हैं,
3: जी जी,
2: रीढ़ तोड़ दी थी दुश्मन की, रीढ़ तोड़ दी थी दुश्मन की, माँ पर जब आघात हुआ पानी उसने भी मांगा दुश्मन के जो साथ हुआ। लाज मैंने राखी माटी की, लाज मैंने राखी माटी की, शिक्षा थी जो पाई अंतिम क्षण तक लड़ा अडिग, गोली सीने पर खाई, गोली सीने पर खाई। श्रोताओं से भी मैं मुखातिब हो रहा था कि वो है जिसकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं, तो अगले वाली पंक्ति वही है। वो बच्चा चूंकि बार बार शिकायत कर रहा था कि पिताजी आप या माताजी जो भी हमारे यूनिफॉर्म में लोग हैं आप नहीं आ पाते हैं, तो उन्हीं को समझाते हुए बोल रहा है वो हमारा रक्षक सिपाही कि शादी शगुन मुहूर्त क्रिसमस, शादी शगुन मुहूर्त क्रिसमस, ईद दिवाली और बैसाखी, मेरा देश उत्सव में नाचे, देश मेरा उत्सव में नाचे, मैं सदा पहन रखता था खाकी, याद मुझे था तेरा जन्मदिन, याद मुझे था तेरा जन्मदिन, मेरे बच्चे आना चाहता था। बालक चूंकि शिकायत कर रहा है भावुक हो जाता है, याद मुझे था तेरा जन्मदिन, मेरे बच्चे आना चाहता था, पर रहे सुरक्षित लाखों लाड़ले, यूं अति व्यस्त खुद को पाता था।

0: व्यस्त खुद को
1: प्राथमिकताएं, जीवन की प्राथमिकताएं,
0: संबंधों की प्राथमिकताएं, किसको हमें तरजीह देना है। अब बहन बड़ा ही मुश्किल होता ना, है एक बहन के हाथ में,
1: बड़ा करुणा में संबंध,
0: करुणा में राखी का धागा हो और कलाई कहीं ना दिखाई दे, तो उसको समझाते हुए मेरा सिपाही बोल रहा है, देश का रक्षक, धागा राखी का बहना, सिंह साहब श्रोताओं, धागा राखी का बहना, तुम यूं ही भेजते रहना, भाई तेरा सीमा का रक्षक, भारत माँ का गहना। मैं हूं ना हूं, मेरे साथी वहां पर कलाई के साथ मौजूद है,
1: कोई ना मेरे रूप में कोई ना कोई,
0: कोई, है, कोई है, भाई तेरा सीमा का रक्षक, भारत माँ का गहना। अब एक नए शब्द का उपयोग किया यहाँ पे, कल्पवृक्ष सहचरी के लिए, क्योंकि वो है जिसकी वजह से वो वहां खड़े होते हैं, कि सच है सुख वह दे नहीं पाया। श्रोताओं, सच है सुख वह दे नहीं पाया, कल्प वृक्ष हे सहचरी, कल्प वृक्ष हे सहचरी, और वर्दी उसको पहना देना। इस पंक्ति पे मेघ जान है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वर्दी उसको पहना देना, घर आए शेर या कोई परी, घर आए शेर या कोई परी। अंतिम चार लाइनें हैं, देखिए क्या लगाव है जिंदगी से, किस तरह जीता है मेरा सिपाही संबंधों को। नमन तिरंगे को करता था, श्रोताओं, नमन तिरंगे को करता था हूं और करता जाऊंगा, आगे तक का प्रण ले रहा है, नमन तिरंगे को करता था हूं और करता जाऊंगा, तेरे दूध का कर्ज बड़ा मां, तेरे दूध का कर्ज बड़ा मां, कभी ना पीठ दिखाऊंगा, चल ना सका इन कदमों पर। श्रोताओं, इन दो पंक्तियों में पूरा सार है, और मुझसे कनेक्ट हो पा रहे होंगे वो लोग जिनके घर में सिपाही हैं, देश के फौजी हैं, कि नमन तिरंगे को करता था हूं और करता जाऊंगा, तेरे दूध का कर्ज बड़ा मां, कभी ना पीठ दिखाऊंगा, और चल ना सका इन कदमों पर। सिंह साहब, चल ना सका इन कदमों पर, तो लिपट तिरंगा आऊंगा, मैं लौट के फिर आऊंगा, संबंध सभी निभाऊंगा, मैं लौट के फिर आऊंगा। श्रोताओं, खासकर मेरे जो यंग बॉयज हैं, बच्चे हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि लक्ष्य रखो, अपने आप को जानो पहचानो, और जिंदगी को एक बड़े उद्देश्य के साथ जियो, कभी भी चिंता करके, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, जीवन का कोई रीटेक नहीं है, जिंदगी को जियो बिना
1: बहुत बोझ के,
0: बहुत बोझ के साथ,
1: क्यों जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और यही मेरा विषय भी है, जैसा सिंह साहब, तो श्रोताओं,
1: बोझिल जिंदगी नहीं चाहिए,
0: बोझिल जिंदगी, तो ये यही शीर्षक है इन लाइनों का, जियो जिंदगी, है जिंदगी अनमोल प्यारे, जरा मुस्कुरा दे,
1: क्या बात है,
0: है जिंदगी अनमोल प्यारे, जरा मुस्कुरा दे, काहे ढोए बोझा, क्या बात करे,
1: क्या बात है,
0: काहे ढोए बोझा, तनाव गड्ढे में गिरा दे, है जिंदगी अनमोल प्यारे, जरा मुस्कुरा दे, काहे ढोए बोझा, तनाव गड्ढे में गिरा दे, खट खट के मरता है क्यों रे चिंतामणि, तूने मानव देह पाई, तू है सबसे धनी। देखिए प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज हंसे, धरती हंसे, हंसते चांद सितारे, तू भी खुल के हंस ले प्यारे, हो जाएंगे वारे न्यारे, और हर शाम के बाद दिन आता है, ढल जाएगी शाम अंधेरी, ढल जाएगी शाम अंधेरी, नई सुबह आएगी, हर पतझड़ के बाद बसंत है, कोयल पुनः गाएगी, और हार जीत सुख दुख जीवन के, हार जीत सुख दुख जीवन में, सिक्के के दो पहलू, बड़ा लक्ष्य भी मिल जाएगा, एक कदम तो चल तू,
1: क्या बात,
0: बड़ा लक्ष्य भी मिल जाएगा, एक कदम तो चल तू।
2: तो अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति परक काव्यात्मक बातचीत, जिसमें दीप चंद वर्मा से बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। और अब समय है कहानी का, तो आइए सुनते हैं कहानी स्वर्णिम भारत। कहानीकार है प्रोफेसर डॉक्टर शशि किरण।
3: मेरी कहानी का शीर्षक है स्वर्णिम भारत। आज के युग में सामान्य जन ने राजनीतिज्ञों पर भरोसा करना छोड़ सा दिया है। बदलते परिवेश में राजनेताओं की छवि धूमिल सी पड़ती जा रही है। सत्ता के बंद में चूर राजनीतिज्ञ

अहंकार भाई भतीजावाद के अतिरिक्त निरंकुश भी होते जा रहे हैं। उनके सारे कस्मे वादे चुनाव तक ही सीमित रह जाते हैं। युवा पीढ़ी का निरंतर शोषण करने वाले नेता बेरोजगारी, आर्थिक विकास, मूलभूत आवश्यकताओं पर कम ध्यान देकर प्रचार प्रसार और अपने हितों के तहत लोक हित को विस्मृत करते जा रहे हैं। ऐसे शोचनीय वातावरण में कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे भी हैं जो परिभाषा को निरर्थक साबित करते हुए लोकहित राष्ट्रहित में निरंतर सेवारत और प्रयासरत दृष्टिगोचर होते हैं। निसंदेह ऐसे शासकों की भारतवर्ष को अति आवश्यकता है जो राष्ट्र की दिशा एवं दशा बदलने में सक्षम हो सकते हैं। राष्ट्रहित में जीने मरने वाले एक ऐसे ही नेता हैं श्री विवेकी राय, जो सही अर्थों में देश के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, जो निज स्वार्थों से रहित होकर अपना जीवन समाज सेवा के लिए न्योछावर कर चुके हैं। सौम्य एवं शांत स्वभाव के विवेकी राय सरल हृदय एवं आकर्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको देखते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। उच्च शैक्षणिक योग्यताओं से युक्त विवेकी राय को समाज सेवा के संस्कार बालपन से ही मिले हैं। कुशाग्र बुद्धि विवेकी राय के पिता स्कूल में अध्यापक थे। घर में खेती बाड़ी का कार्य भी होता था। गांव के किसी भी जाति का पुरुष हो या महिला, विवेकी राय उनका पूरा सम्मान करते थे। सबको राम राम करना, बुजुर्गों के आते जाते पैर छूना उनके स्वभाव में था। आज स्थिति यह है कि अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के पैर छूने में भी शर्म महसूस करते हैं। उनके प्रेम की परिभाषा अलग हो चुकी है, जबकि पैर छूने से आशीर्वाद ही मिलता है और अहंकार का क्षय होता है। आज के बच्चे अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ जानते तक नहीं है। इन सब का प्रभाव हमारे समाज में तेजी से दिखाई दे रहा है। बालक विवेकी राय अपनी दादी को देखता कि वह खेतों में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं एवं दलित जाति के पुरुषों से कितने प्रेम से बात करती हैं, उनका पूर्ण सम्मान करती हैं। वे पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन भी दिया करती थी, जबकि अभी भी कई स्थलों पर स्त्रियों को पुरुषों से कम मजदूरी मिलते हुए देखा जाता है। दादी घर या खेत कहीं पर भी किसी महिला की प्रसूति होने पर उन्हें 15 दिन का वेतन, घी, गुड़ इत्यादि दिया करती थी। विवेकी राय ने नारी का सम्मान करना दादी से ही सीखा था। बच्चे वही सीखते हैं जो उनके माता पिता या दादा दादी करते हैं। इसलिए यदि हम बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना चाहते हैं तो उन संस्कारों का हमें स्वयं ध्यान रखना चाहिए। इसी से समाज में और राष्ट्र में परिवर्तन हो सकता है। विवेकी राय जब छोटा था उसके मन में हमेशा कोई ना कोई प्रश्न उठता ही रहता था। वह अपनी माता से प्रश्न करता, माँ आप मुझे और दीदी को एक साथ एक जैसा खाना देती हैं, एक जैसा काम कराती हो, एक साथ एक जैसा पढ़ाती हो, पर पड़ोस वाली काकी तो अपनी बेटी को हर समय डांटती रहती हैं और उसे पढ़ने भी नहीं देती, पर भैया को हमेशा लाड प्यार करती हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं माँ? सबकी अपनी सोच है बेटा, माँ ने उत्तर दिया। ये सोच बदली भी जा सकती है, विवेकी राय ने पूछते हुए कहा। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जरूरत है अब समाज की सोच बदली जाए एवं बेटी बेटियों के साथ पूरी तरह समान व्यवहार किया जाए, माँ ने कहा। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे को स्वतंत्र वातावरण देते हैं और बेटियों को दिन रात संस्कारों का पाठ पढ़ाते रहते हैं। क्या बेटों को संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती? क्या बेटों से पूछना आवश्यक नहीं है कब, कहाँ और कैसे जा रहे हो? यदि बेटे और बेटियों को हर क्षेत्र में समान परवरिश मिले तो युवा पीढ़ी की नैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो सकता है। विवेकी राय के गाँव में एक मुसलमान व्यक्ति शाहरुख रहट पर पानी चलाया करता था। उस पानी को पूरा गांव पीता था, पर शाहरुख को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बालक विवेकी ने अपने पिता के समक्ष ये बात रखी और कारण पूछा, पिताजी शाहरुख में और हम सब में कोई अंतर है क्या? नहीं तो, पिता ने सहजता से उत्तर दिया। फिर उसे वो पानी पीने की इजाजत क्यों नहीं है जो सब पीते हैं, बालक ने पूछा। सबके लिए पानी तो वही चलाता है, फिर उसी को पानी पीने नहीं दिया जाता, विवेकी राय ने प्रश्न किया। अब आगे से हमारे गांव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक जैसे हैं, पिता ने पुत्र को आश्वासन दिया। पिता को भी बेटे की बात सही लगी और उन्होंने पूरे गांव का विरोध सहते हुए सभी जातियों को समान रूप से पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इस तरह विवेकी राय के हृदय में भीतर तक समाज में समानता और लोकतंत्र की भावना की जड़ें गहरी होती चली गईं, जो आगे चलकर उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। विवेकी राय मंत्री बनने के बाद जब भी किसी का कोई सही काम होता उस काम को पूरे मन के साथ करवाते, किंतु गलत कार्य का वे कभी साथ नहीं देते थे। इससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और वे व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए।
सही का साथ देने के कारण उन्हें

0: जेल में बिना कारण के डाल दिया गया। न्यायिक व्यवस्था भ्रष्ट होने के कारण उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। जेल में रहकर भी उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका अधिकांश समय आध्यात्मिकता और पुस्तकों के अध्ययन लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें जेल में रहकर ही लिखी। उन पुस्तकों का युवा पीढ़ी पर बेहद प्रभाव पड़ा। समस्त युवा वर्ग उनका दीवाना हो गया। प्रद्युम्न नामक एक युवा के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ने की योजना बनाई। अंततः सत्ता में परिवर्तन हुआ। उन्होंने संस्कारी एवं परिश्रमी युवा पीढ़ी का निर्माण किया। चुनाव में उन्होंने बहुमत के साथ भारी विजय प्राप्त की। युवा पीढ़ी का उन्हें पर्याप्त समर्थन मिला। इतने वर्षों में जेल में रहकर विवेकी राय ने वैराग्य भावना अपना ली थी। वे पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुके थे और राष्ट्र का कल्याण ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था। बेटा और बेटी दोनों ही उनके चरण चिन्हों पर चलकर राष्ट्र के प्रति समर्पित हो चुके थे। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सर्वाधिक वफादार योग्य नेता प्रद्युम्न को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई। स्वयं चाणक्य बनकर अपने शिष्य पर अंकुश रखते हुए एक बार फिर से चंद्रगुप्त के स्वर्ण युग की कल्पना को साकार किया। आज फिर से भारत राष्ट्र सोने की चिड़िया बन चुका है। पूरे विश्व में भारत का परचम फिर से लहरा रहा है। ये केवल विवेकी राय जैसे महान राष्ट्रभक्त, समाज सेवक, पथ प्रदर्शक के कारण ही संभव हो पाया है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे कहानी स्वर्णिम भारत। कहानीकार थी प्रोफेसर डॉक्टर शशि किरण। साहित्यिक पत्रिका भंगिमा के आज के अंक में बस इतना ही। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: साहित्यिक पत्रिका भंगिमा।

अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग रहा चंद्रिका कुमार का, संयोजन एवं प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसानवाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 के मध्य प्रसारित होगा। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय संध्या 6:30 से 6:50 के मध्य तक एवं ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से 6:30 के मध्य तक रहेगा। सूचना समाप्त हुई। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं का स्वागत। और कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह, सिमरजीत सिंह और अनिता भट्ट की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है रोचक कोहली का। फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी।

और कार्यक्रम का ये अगला गीत हम ले रहे हैं फिल्म नरसिम्हा से। इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म एक और एक 11 से।

ओम जय जगदीश। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में। गीत को समीर ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना फिल्म ब्लफ मास्टर से।

रॉबर्ट उलेमन अर्श की आवाजों में आपने सुना दोस्ताना फिल्म का ये गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं, आपका इलाज करने आई हूँ। क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम सिंह जी?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो।
0: कि सावन का महीना आरंभ हो चुका है और इस महीने में आपको विशेष बात क्या अच्छी लगती है इस महीने की?
1: जी, सावन का महीना तो शुरू हो चुका है, इसमें महाकालेश्वर बाबा के मतलब आराधना होती है हमारे उज्जैन शहर में
0: जी,
1: जहाँ पर बहुत दूर दूर से कांवड़ यात्री आते हैं कांवड़ लेके और अपने हर राज्य से मतलब जल अभिषेक करते हैं बाबा का यहाँ पर आकर।
0: हाँ जी
1: जी और उसके लिए काफी मतलब रास्ते चौड़े कर दिए गए हैं, जगह जगह भंडारे भी लगाए जाते हैं।
0: जी जी जी
1: जी तो, और कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इस बात का सभी लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं।
0: तो सावन के महीने की विशेष आराधना की आपने बात की और अब बात करेंगे आपकी पसंदीदा गीत की, बताइए कौन से गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, सावन का महीना शुरू हो चुका है और बाबा की आराधना के रूप में आप कोई भी शिव भक्ति का गाना सुनवा दीजिएगा, भजन।
0: जी, आपने फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रेम, प्यार भाई नमस्कार।
0: जी नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
1: दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ आदरणीय रश्मि दीदी से आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में प्रजापति जी। और देखिए सावन का महीना आरंभ हो चुका है, ये महीना विशेष होता है और इसकी बहुत सारी बातें विशेष रूप में हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपको कौन सी खास बात इस महीने की लगती है?
1: दीदी इस महीने की सबसे अच्छी और खास बात है कि हमारे रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ती रहती है, चारों तरफ हरियाली व्याप्त रहती है, पेड़ पौधे बाग फुलवारी सब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, भौरे गुनगुन करते रहते हैं, कोयल बोलती रहती हैं, तितलियां मंडराती रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम रहता है और ये मौसम मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। और देव महादेव का भी ये महीना बहुत ही प्रिय है, पसंदीदा है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं देव के देव महादेव जल चढ़ाने पर।
0: जी तो ये तो बातें वो रही जो आपको प्रिय है इस महीने में, लेकिन गीत कौन सा प्रिय है वो भी बता दीजिए।
1: दीदी आपकी प्रस्तुति आपकी जो प्रोग्राम के तरीके हैं प्रस्तुत करने का वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, ये आपका प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
0: जी बहुत बहुत आभार प्रजापति जी, आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं और आप हमारा समय समय पर उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं, इसके लिए भी पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और अब अपनी पसंद बताइए।
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
0: जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मौसम का जादू मितवा, ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सावन के महीने में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: जी

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी, परिचय दे दीजिए जी।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सामरिया गांव थैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में सांवरिया जी। और देखिए सावन का महीना आरंभ हो गया है और इस महीने में हमारे साथ ऐसी बहुत सारी विशेष बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आपको इस महीने की कौन सी विशेष बात पसंद आती है?
1: अरे सिद्ध जी, भगवान भूरा खाने के लिए गए ससुराल, ये सबसे अच्छी पसंद आती है।
0: अरे वाह भोलेनाथ भी भूरा खाने गए थे?
1: हाँ, रक्षाबंधन तभी तो मनाया जाता है ये।
0: अच्छा जी, चलिए आपसे एक और नई जानकारी मिली और

0: पसंद क्या रहेगी आपकी?
1: पसंद आप सुनवाइए प्यासा सावन प्रेम से, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
0: ठीक है, आपने कॉल किया, धन्यवाद।
1: नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: ये चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, शारदा प्रसाद जी हैं, राजू लवानिया जी हैं और याद राम जी हैं।
0: ठीक है।

0: आप एग्री करते हैं?
1: हाँ, पकौड़े भी बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं कभी कभी। अच्छा, जम जम पानी बरसता है शाम को, जब आनंद आता है।
0: जी, चाय और पकोड़े का भी इस सावन के महीने में अद्भुत संगम है। और आपकी नजर में वैसे सावन का विशेष महत्व क्या है?
1: महत्व तो ये, सावन में अच्छी हरियाली भी हो जाती है, सो अच्छा आनंद भी आता है।
0: जी,
1: जहाँ नजर जाती है तो हरियाली आती है।
0: जी,
1: और जो बहन भैया नहीं आ पाते हैं, जो पास में बेबी आ जाते हैं।
0: जी जी जी, क्योंकि त्योहार रक्षाबंधन का आता है, और इसी के साथ आपकी पसंद क्या रहेगी?
1: आज पसंद रहेगी अनाड़ी पिक्चर का सिनेमा, फूलों से चेहरा तेरा कुदरत।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी। दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: दीदी आपका जाना पहचाना एवं नियमित श्रोता ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम नगला राणा सिहोरा मथुरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा है।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में महेंद्र जी। और देखिए सावन का महीना आरंभ हो चुका है। इस महीने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और कुछ ना कुछ तो हमें इस महीने में विशेष लगता ही है। आपको क्या विशेष लगता है?
1: देखिए ये सावन का महीना है जो बड़ा ही खूबसूरत महीना है और वैसे खास तौर से इस महीने में भाई बहन का ये जो पर्व आता है ना रक्षाबंधन, इसका विशेष महत्व है। और हम तो यही कहेंगे कि ये खूबसूरत मौसम सभी के लिए खुशनुमा हो, जैसे आज है जिस दिन हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में
0: जी। तो
1: ये रिमझिम फुहा रहे हम श्रोताओं तक, आकाशवाणी जैसे अपने प्रोग्रामों की बौछार कर रही है वैसे ही हमें मिलती रहे।
0: जी बिल्कुल मिलती रहेगी। और पसंद क्या रहेगी?

0: दीदी गाना है फिल्म मेरा गांव मेरा देश
1: जी, कौन सा गीत?
0: लता जी और रफी साहब का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है, कुछ कहता है ये सावन। हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त है राधेलाल सारस्वत जी शिहोरा से।
1: ठीक है, आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे मित्रता दिवस विषय पर, क्योंकि आज मित्रता दिवस है। श्रोताओं, कुछ रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और विश्वास से बनते हैं, और ऐसा ही ये एक रिश्ता है मित्रता का। मित्रता दिवस दोस्ती के खूबसूरत बंधन को समर्पित एक विशेष दिन है। यह दिन उन दोस्तों के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो हमारे जीवन को खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाते हैं। और हमारे देश में मित्रता दिवस अगस्त के पहले रविवार को, यानी कि आज के दिन ही मनाया जाता है। श्रोताओं, ये बात बिल्कुल सच है कि सच्ची मित्रता आपसी विश्वास, अटूट समर्थन और दिल से जुड़ाव पर टिकी होती है, और ऐसे रिश्ते हमारी जिंदगी को अर्थ और संबल देते हैं।

श्रोताओं, मित्रता दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक गहरा आत्मीय और स्नेहपूर्ण संबंध है जो विश्वास, सहयोग और आपसी समझ पर आधारित होता है। यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें सुख दुख की साझेदारी और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की परवाह की जाती है। संकट और सुख के साथ साथ खड़े रहना ही दोस्ती है। एक दूसरे पर अटूट भरोसा करना ही दोस्ती है। गलत राह पर जाने से रोकना और सही सलाह देना ही दोस्ती है। श्रोताओं,

श्रोताओं, मित्र का चयन करते समय व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और सच्चाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, गलत राह पर जाने से रोके और जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। हमेशा सच्चे और अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को दोस्त बनाएं, जो बुरी आदतों से दूर रखता हो, जो केवल सुख में नहीं बल्कि दुख और कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई ना करे और आपकी गोपनीय बातों को सुरक्षित रखे। ऐसे व्यक्ति को ही मित्र बनाएं। श्रोताओं, उसकी मित्रता में किसी भी प्रकार का स्वार्थ या दिखावा नहीं हो, वह आपके सुख में खुश और दुख में दुखी हो।

ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت تا قیامت جو

श्रोताओ, सच्चे मित्र हमेशा बिना किसी डर या झिझक के आपसे अपनी बात कह सकते हैं। मन की उदासी और तनाव कम होता है यदि आपके पास एक सच्चा मित्र है, और जीवन में मुश्किल समय में सही मार्गदर्शन मिल सकता है आपको यदि आपके पास एक सच्चा मित्र है। आपकी बातें हमेशा गुप्त रहेंगी, और गलती पर समझाना और हाल में आपका साथ देना ये एक सच्चे मित्र की निशानी होती है। और श्रोताओं, कहा भी जाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा मित्र अवश्य बनाना चाहिए जिसके सामने हम अपना पूरा दिल खोल सकें। और अगर हमने एक ऐसा मित्र बना लिया तो कभी भी किसी डॉक्टर से अपना दिल खुलवाने की नौबत नहीं आएगी।

श्रोताओं, मित्र हमारे जीवन में वह व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। जीवन में सच्चे मित्र होना जरूरी है, जितना हमारे खाने में नमक होना। जिस प्रकार नमक ना होने के कारण खाना एकदम बिना स्वाद का हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों के बिना भी जीवन बेस्वाद लगने लगता है। एक सच्चा मित्र वो नहीं है जो आपके जीवन में घटित सारी घटनाओं को सुने। एक सच्चा मित्र वह है जिसने आपके जीवन की घटनाएं आपके साथ जी हों। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उनके जीवन में अच्छे मित्रों का साथ मिला हो। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे मनुष्य का हृदय कई अन्य पीड़ादायी आदतों से दूषित हो रहा है। लेकिन फिर भी दोस्ती आज भी कायम है, दोस्ती का रिश्ता आज भी कायम है और इसे लोग बहुत ही ईमानदारी से निभाते भी हैं।

श्रोताओ, मित्रता जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। जिसे जीवन में मित्रों का अभाव नहीं रहता, उसकी जिंदगी अपेक्षाकृत अधिक सरल, सफल और हंसी खुशी से भरी पूरी रहती है। उसे कभी एकांकीपन अथवा सूनापन खटकने नहीं पाता। उसकी जिंदगी में एक रस, एक हरियाली और एक उल्लास सदैव बना रहता है। जिसे सच्चे तथा निश्चल मित्रों की उपलब्धि हो जाती है, उसे जीवन में शत्रुओं तथा संकटों का भय नहीं रहता। इसलिए श्रोताओं, हम तो आपसे यही कहेंगे कि मित्रता हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और मित्रता बनाए रखनी चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था मित्रता दिवस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वाली।

अभी आपने सुनी फिल्म चांदी और सोना से ये कव्वाली। इस कव्वाली को गाया था सोनू निगम और भरत जोशी ने। कार्यक्रम की अगली कव्वाली आइए सुनते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। आवाज दी है सोनू निगम ने।

0: नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाज में अभी आपने सुनी ये कव्वाली, फिल्म का नाम था धड़कन। और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं मृदुला नंदा।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मल्हार गायन। कलाकार हैं मृदुला नंदा।

0: भारती शर्मा से अभी आपने सुनी ये मल्हार, और इसी के साथ ही हमारा आज का ब्रजलोक गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है।

0: हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। लेखक होंगी वसुधा बनर्जी, प्रस्तुति नवोदिता मिश्रा की होगी। रविवार से यह अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे TN शर्मा की लिखी हुई झलकी, सिफारिश प्रस्तुति विमल अरोड़ा की होगी। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर, प्रस्तुति राजेश कुमार शर्मा और रश्मि शर्मा की होगी।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें चर्चा होगी विश्व स्तनपान सप्ताह विषय पर, साथ ही श्रोता सुनेंगे मन भावन के अंतर्गत ब्रज लोकगीत।

संध्या 7:31 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म संगीत श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी सुन सकेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए सुनते हैं इस मास का गीत। बोल है पिया सावन की लागे झड़ी। स्वर पुष्पा पगधरे और साथियों के हैं। गीत लिखा है मुरली मनोहर मंजुल ने, संगीत नरेश मल्होत्रा का है।

0: अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत, बोल थे पिया सावन की लागे झड़ी, स्वर पुष्पा पगधरे और साथियों के थे। गीत लिखा था मुरली मनोहर मंजुल, संगीत नरेश मल्होत्रा का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट।

0: convenient faster connectivity ke saath Noida International Airport where dreams take off.
1: भैया जल्दी चलो मेरी फ्लाइट है.
2: आराम से मैडम.
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक नो टेंशन.
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
4: आइए सुनते हैं टी एन शर्मा की लिखी हुई झलकी. सिफारिश प्रस्तुति विमल अरोड़ा की है.
5: हम आपको सुनवा रहे हैं टी एन शर्मा की लिखी झलकी सिफारिश. प्रस्तुति श्रीमती विमल अरोड़ा की है.
6: ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हे भगवान, ये कैसा भीषण तूफान है. मेरा पुत्र मेरी पत्नी खेत पर चले गए हैं. चलकर देखूं. हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ है. मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा. मेरा एक पुत्र और पत्नी भी मुझसे छीन ली तुमने. अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं प्रभु. मेरा संसार में अब कोई नहीं है. भोलेनाथ, ये तुमने क्या किया. भोलेनाथ, ये क्या किया तुमने. चलो अब इस गांव में रहकर क्या करूंगा. जहां मेरा सर्वस्व लुट गया, अब तो भिक्षा मांगूंगा और तेरा ध्यान करूंगा प्रभु.

0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
1: पंडित जी, आप कहां से पधारे हैं?
0: भैया, मेरा सब इस भोलेनाथ ने ले लिया। अब किस गांव का अपने आप को बताऊं?
1: अगर आपका कोई नहीं पंडित जी, तो आप इस मंदिर में ही रहे और भोलेनाथ की सेवा पूजा करें।
0: महोदय, मैं आपका परिचय जान सकता हूं?
1: मैं इस गांव का जमींदार हूं और मेरे ही पुरखों ने इस मंदिर को बनवाया है।
0: अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा।

0: ओम नमः शिवाय। अरे अरे भगवान, आप, मेरा जीवन धन्य हो गया।
1: हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो, क्या मानते हो?
0: अरे वाह रे भोलेनाथ, जिनके लिए कुछ मांगता वो तो अब रहे नहीं, किसके लिए अब क्या मांगूं? तुमने तो मेरा एकमात्र पुत्र और ब्राह्मणी को भी अपनी शरण में ले लिया।
1: ब्राह्मण, जो तेरे भाग्य में था अब तक वही हुआ। अब बोल, क्या चाहता है तू?
0: मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं चाहिए मुझे।
1: मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वस्त बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए?
0: अगर भोलेनाथ कुछ देना ही है मुझे, तो अंतर्दृष्टि दीजिए जिससे कि मैं आने वाले कल को देख सकूं और इस गांव की जनता की कुछ भलाई कर सकूं।

0: कुं प्रभु
1: तथास्तु।
2: मेरे मुकदमा में क्या हुआ?
0: तुम्हारे मुकदमे में तुम्हारी जीत अवश्य होगी।
3: पंडित जी, मेरा छोरा बाहर चलो गयो, चार दिन आते घर ना आयो, पता नहीं कहाँ चलो गयो। ये बताए थे पंडित जी, नहीं कृपा करो कि वह घर लौट के आए कि ना आए। पंडित जी, मैं रो रो के आंधरी आ गई। पंडित जी,
0: लगता है वो पूर्व दिशा की ओर गया है।
3: पूर्व दिशा की ओर? पर आएगा कब पंडित जी? आएगा कि ना जी बताए दो।
0: चार दिन बाद वो अपने आप स्वयं घर वापस आ जाएगा।
3: जय हो पंडित जी, तोरी जय हो पंडित जी। आ जाएगा मेरा छोरा, आ जाएगा।
0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे, इस गांव में तो महामारी फैलने वाली है, क्यों ना मैं ग्रामवासियों को सचेत कर दूं?
4: पंडित जी प्रसन्न तो हो?
0: हाँ, मैं प्रसन्न हूं, परंतु मुझे एक चिंता सता रही है जमींदार।
4: काहे की चिंता महाराज?
0: इस गांव में महामारी आने वाली है।
4: अच्छा?
0: जो लोग यहाँ रहेंगे, हाँ, उनका परिवार और वो नष्ट हो जाएंगे।
4: तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए?
0: आप गांव में मुनादी करवा दें, जिससे सब गांव वाले इस बात से अवगत हो जाएं कि वो इस महामारी से बच सके।
4: अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो भैया, चलो चलो चलो। सुनो सुनो गांव वासियों, सुनो, पंडित जी ने भविष्यवाणी करी है।
5: करी है?
4: जे कही है,
5: हाँ,
4: जो इस गांव में रहेगा,
5: अच्छा,
4: और वह कल तक यहाँ से चला नहीं जाएगा, वो महामारी के प्रकोप में आ जाएगा और नष्ट हो जाएगा।
5: हाँ, अरे कहानी है, हम आने वाली बात करने।
4: और सभी गांव वालों से ये प्रार्थना है, हाँ, जोर के निवेदन करें हैं, दो दिन के लिए गांव को छोड़ के कौंवता चले जाओ।
6: वाह पंडित जी, पायल लागू।
7: पंडित जी आपकी जय हो।
0: तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो?
7: महाराज, मैं दूसरे गांव से आपकी कीर्ति सुन के आया हूँ, और मैं आपको सुख हैवरी की ताई यहाँ पधारा हूँ।
0: अरे भैया, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, तुम जाओ।
7: नाय महाराज, अगर मोए आपने अपना शिष्य नाय बनायो तो मैं आपके चरणन में ही प्राण त्याग दूंगा।
0: शिव शिव शिव। अच्छा, तुम नहीं मानते तो कल प्रातःकाल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा।
7: जैसी आज्ञा महाराज।
0: ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, ये रामू मेरा शिष्य बनना चाहता है। ठीक है, इसे अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
7: गुरुजी प्रणाम, मैं आ गया हूं।
0: क्यों न मैं इस रामू के बारे में भविष्य जान लूं, कहीं ऐसा तो नहीं बाद में जिले

0: नाम चलाने की जगह मेरी कीर्ति को नष्ट करे और मेरे रहे सहे नाम को भी बदनाम कर डाले। ओम नमः शिवाय।
1: रामू। हाँ महाराज।
0: मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, अब तुम और किसी से दीक्षा लेना समझे।
1: महाराज कछु तो बताओ, आपने ही तो दीक्षा देवी की बात कही।
0: मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुम कहीं अन्यत्र चले जाओ। बस
1: आज आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं अब ही अपने प्राण त्याग दूंगा। अब मैं आपके चरणों में झुक के कहीं ना जाऊंगा।
0: शिव शिव शिव, कैसी भोलेनाथ की इच्छा, मैं क्यों इसकी मृत्यु का कारण बनूं? क्यों ना मैं भोलेनाथ से इसका जीवन दान मांग लूं? अच्छा भैया रामू।
1: हाँ महाराज।
0: तू आज तो मेरा शिष्य हुआ।
1: धन्य हो महाराज, आपकी जय हो।
0: ओम नमः शिवाय।
2: ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ।
3: मां, क्या वर मांगना चाहता है?
0: प्रणाम भोले बाबा। हे भोलेनाथ, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा,
2: मैंने अपना एक
0: शिष्य बनाया है। उसकी उम्र बहुत कम है, आप उसकी लंबी आयु दे दें,
2: जिससे मेरे मरने के बाद
0: वो मेरी कीर्ति बढ़ा सके।
3: वक्त मैं वरदान दे सकता हूं और सृष्टि का संहार कर सकता हूं, किंतु किसी की आयु बढ़ाना ये केवल ब्रह्मा जी का काम है। अतः मैं तुमको लेकर उनके पास चलता हूं। चलो।
0: जैसी आपकी मर्जी प्रभु।
4: जय हो, जय हो ब्रह्मा जी की, जय हो,
3: कल्याण हो। अरे भोलेनाथ, आपने आने का कष्ट कैसे किया?
5: देव, इस ब्राह्मण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने वरदान दिया है इसे, उसमें एक अड़चन आ रही है कि इनके शिष्य की आयु कुछ कम है। देव, आप उस रामू की आयु बढ़ा दें।
3: हे देवाधिदेव भोलेनाथ, मैं केवल लोगों का भाग लिखता हूं, मैं केवल भाग विधाता हूं। इसके बाद जीवन दान देना केवल विष्णु ही भगवान जाने, ये कार्य उनका है। अतः आप मेरे द्वार पर आए हो, मैं भी आपके साथ विष्णु भगवान के लिए प्रार्थना करने को चलता हूं।
6: सागर में आप लोगों का आगमन, इसका क्या प्रयोजन है?
3: अंतर्यामी प्रभु, भोलेनाथ अपने शिष्य की आयु बढ़वाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इन्हें लंबी उम्र प्रदान करें।
2: ब्रह्मा जी,
3: मैं तो मनुष्य को केवल जन्म देता हूं, उसका भाग्य नहीं लिखता, मैं ही उसका संहार करता हूं। आप सब लोग मेरे यहाँ आए हैं, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए
7: करूँगा। इस रामू का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के यहाँ है
3: और उसका आदेश पालन करने वाला है यमराज। मैं स्वयं आपके साथ चलकर उस बही को निकलवाता हूँ और यमराज को आदेश दे दूंगा, इसकी उम्र और बढ़ा दे।
7: यमराज ठहरो, हम आए हैं।
3: अरे दृष्टियम, भगवान विष्णु जो जगत के सृष्टा हैं, उनके सामने भी तू अपनी कमी से नहीं चूका। ये जीवन दान देते हैं

0: तो मैं सत्य का संहार करता हूँ। तूने हम तीनों देवताओं का अपमान किया है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा।
1: प्रभु मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, मुझे लिख कर भिजवा देते हैं, मैं तो केवल वही आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ महाराज। मेरा इसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है, आप मुझे दंड ना दें। इस शिलाखंड के नीचे रखा है महाराज, पहले से पर बाद में ही मुझे प्राण दे देने की आज्ञा प्रदान करें।
0: ब्राह्मण उठाओ कागज को और पढ़ो।
2: रामू नामक व्यक्ति की उम्र वैसे काफी है, किंतु जिस दिन ये अपने गुरु के साथ और तीनों देव इसके जीवन दान की सिफारिश लेकर यमराज के दरवाजे तक आएंगे, उसी क्षण इसकी मृत्यु शिलाखंड से हो जाएगी।
3: अभी आप सुन रहे थे टीएन शर्मा की लिखी हुई झलकी सिफारिश, प्रस्तुति विमल अरोड़ा की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति राजेश शर्मा और रश्मि शर्मा की है।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि शर्मा और
1: राजेश शर्मा का प्यार भरा। नमस्कार
0: जी। राजेश जी, अभी देखिए हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स हम तक आ रहे हैं और सावन का महीना भी आरंभ हो चुका है, तो ये महीना जो खुशहाली का है, उल्लास का है, उमंग का है, आपका मन क्या कह रहा है?
1: मेरा मन ये कह रहा है रश्मि जी कि ये उल्लास, ये उमंग, ये खुशियां हम श्रोताओं के साथ बांटे तो और ज्यादा सोने में सुहागा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ले लेते हैं फोन कॉल
0: जी। हेलो।
2: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: हम विपिन कुमार बोल रहे हैं, छोड़ी।
0: विपिन जी कैसे हैं आप और आज कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे?
2: हम तो बहुत ही बढ़िया है, सभी बढ़िया है। आप सुबह 9 बजे कार्यक्रम सुना, आपको के बारे में आपको पसंद आया था
0: जी। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में राजेश जी भी हैं, तो राजेश जी इन्हें आज जो कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से प्ले किया गया आंखों की देखभाल के संबंध में, वो बहुत पसंद आया है।
1: पसंद आया या आप अमल भी करेंगे सुझाव?
2: जैसे आपने वो भी हमको सुनना चाहता दिन 12 बजे
1: जी। धन्यवाद आपका। और कार्यक्रमों के विषय में कुछ और सुझाव या कुछ कहना चाहे?
2: हम सुझाव ये देना, बहुत से कलाकार होते हैं नहीं पता है, तो लिए पता करें, गाने सुनाते हैं उनके नाम बताया
1: जी। बिल्कुल, तो ये बात हम नोट कर ले रहे हैं। और जहाँ तक है वैसे नाम हम आपको बताते हैं कार्यक्रम के साथ, फिर भी अगर कहीं सुनने में या कहने में या बताने में कोई त्रुटि हुई हो तो जरूर आपको इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: हेलो,
2: श्रोता की बात फोन कॉल के साथ,
1: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, और दे दें अपना परिचय इसके साथ।
2: परम आदरणीय महोदय स्टार सुप्रीम, प्यार से नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: मानवर मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से करता हूँ शारदा नमस्कार।
1: नमस्कार। रश्मि जी हमारे साथ हैं और क्या कह रही हैं वो सावन पे
0: जी।
2: आरे रश्मि दीदी शारदा नमस्कार।
0: नमस्कार प्रजापति जी। और देखिए सावन का महीना आरंभ हो चुका है और इसके साथ ही हमारे आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हैं उनमें भी आपको सावन की जो छठा है वो देखने को, मतलब सुनने को मिल रही होगी, क्यों?
2: जी निसंदेह, चाहे वो ब्रज माधुरी हो, लोकगीत है और जो कार्यक्रम आपके यहाँ के आकाशवाणी वृंदावन से प्रसारित हो रहे हैं उनमें सावन की झलक, क्या झमाझम सावन की बरसात हो रही है और रिमझिम रिमझिम बहारों में कार्यक्रम के आनंद ले रहे हैं
0: जी। तो आनंद लेते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे?
2: आपके केंद्र से जो प्रसारित होते हैं कार्यक्रम

0: वो हमें बहुत ही भाते हैं, लुभाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों का जो प्रयास है वो अत्यंत सराहनीय है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। इतनी मेहनत और परिश्रम से कार्यक्रम तैयार करके हम श्रोताओं के लिए प्रसारित करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब दिल हमारा लगा रहता है कार्यक्रम सुनने में। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो आपके यहाँ से कार्यक्रम सेहत के प्रति जागरूक करने का है और डॉक्टर से परिचर्चा होती है, वो भी फोनिंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, ये भी सूचना शिक्षा और मनोरंजन भरपूर होता है। और अरे जो भी कार्यक्रम होता है, ब्रज लोकगीत है या फिल्म संगीत है, फोनिंग कार्यक्रम, ये बहुत अच्छे लगते हैं।
1: तो प्रजापति जी, हम तो आपके घर से यानी आपकी रसोई से लेके आपके मनोरंजन और आपके स्वास्थ्य तक का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। बहरहाल, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी राजेश शर्मा जी, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ कि सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ आकाशवाणी अवश्य प्रसारित करता है और उन्हें प्रदान करता है। इसके लिए मैं आपको और आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद करते हुए करता हूँ। नमस्कार।
2: हेलो
3: जी, नमस्कार महोदय जी।
2: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
3: मैं सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रिज रेटी छोटा मित्र, गांव चटीगरा, जिला मथुरा से बोल रहा हूँ।
2: कैसे हैं सिसोदिया जी?
3: बहुत अच्छे हैं, आप सुनाओ।
2: जी हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। और
3: आप रश्मि जी बोल रही हो आप?
2: हाँ जी, रश्मि जी बोल रही हूँ।
3: मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक जानकारी मैं लेना चाहता हूँ।
2: हाँ जी,
3: ये ऐप जो चलता है ना मथुरा से, आकाशवाणी मथुरा ऐप बोलता है।
2: हाँ जी।
3: तो उसमें क्या है कि कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या है कि एक दिन बंद रहता है, दो दिन चलता है, एक दिन चलता है, कभी दो दिन बंद रहता है, ये क्या गड़बड़ी आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए आप।
1: सिसोदिया जी नमस्कार, और कहना ये
3: नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहना ये चाहेंगे कि कुछ समस्याएं कभी आड़े आ जाती हैं, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा मोबाइल में भी हम देखते हैं।
3: वो तो नेट में गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारा समस्या ये आती है कि जब आप ये ट्रांसमीटर वाला ये भी काम नहीं कर पाता है कभी कभी।
1: तो ये आपकी समस्या हम तकनीकी विभाग तक पहुंचा देंगे, बिल्कुल आपके।
3: हाँ जी, जब पहुंचा दिए था कि और चैनल आगरा जैसा हमारा पड़ोसी वो बढ़िया काम कर रहा है।
1: जी
3: हमारे मथुरा में दिक्कत आ रही है।
1: जी तो बिल्कुल हम ये पहुंचा देते हैं आपकी शिकायत। और कार्यक्रमों के विषय में कुछ कहेंगे?
3: सर कार्यक्रम के विषय में तो देखो, सबसे बढ़िया कार्यक्रम आजकल चल रहा है हमारे ब्रज ग्वांधरी कार्यक्रम में चल रहा है, जो रश्मि जी के द्वारा से प्रस्तुत किया जाता है कार्यक्रम।
2: जी
3: ब्रज की माटी तो ये प्रणाम
2: जी, धन्यवाद।
3: और इसके अलावा एक मंगलवार को भी कार्यक्रम आता है, वो ब्रज यात्रा।
2: जी जी जी।
3: एक और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी द्वारा से भेंट वार्ता कार्यक्रम प्रसारित की गई थी, ओपी सिंह द्वारा, ओपी सिंह जी ने भेंट की थी, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। वो मैं धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ आपसे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आप लगातार हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार। हेलो
4: जी, दीदी नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
4: कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ।
2: जी स्वागत है कार्यक्रम में।
4: रश्मि दीदी एक बार पुनः नमस्कार आपको।
2: जी पुनः नमस्कार आपको भी, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में राजेश जी भी हैं।
4: अच्छा शर्मा जी।
1: नमस्कार। नमस्कार
4: जी। आदरणीय उद्घोषक महोदय नमस्कार।
1: जी महीन जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करें।
4: सर मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, सिहोरा मथुरा।
1: जैसे आप हमें पहचान लेते हैं आवाज से, अब हम आपको पहचानने लगे हैं।
4: जी जी जी।
1: क्या कहेंगे आज
4: महोदय? आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम काबिले तारीफ है, और मैं सभी कार्यक्रमों को ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं।
1: जी धन्यवाद इसके लिए आपका।
4: आपकी मेहनत सर सार्थक सिद्ध हो रही है, आप जितनी मेहनत करते हैं हम जानते हैं कि आप कार्यक्रमों का जब निर्माण करते हैं तो काफी मेहनत करते हैं, इसलिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
2: जी और देखिए इसके लिए मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में ना जो कार्यक्रम का निर्माण करने वाले हैं उनके मास्टर हैं राजेश जी तो आज उनके प्रोडक्शन तो हमेशा सुपर डुपर, मतलब जिनकी प्रशंसा हम जितनी करें कम है, और उनके द्वारा जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं वो बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम हैं। और क्या कहेंगे
1: जी, हम जरूर कहेंगे, ये एक टीम वर्क होती है।

0: जी, इसमें आप भी शामिल हैं। सुनने वाले जब तक ना होंगे ये मकसद पूरा ना होगा, इसलिए ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरी टीम का कार्य होता है। बहरहाल, कार्यक्रमों के विषय में आपकी समीक्षा।
1: सर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सुबह हर रोज प्रसारित होने वाला भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम है वंदना, इस कार्यक्रम का थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात

0: बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात यह है कि वैसे तो आकाशवाणी केंद्र से हर तरह के प्रोग्राम जाते रहे और जाते रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, लेकिन जो युवा है हमारे इनके लिए कुछ रोजगार समाचार के रूप में आप अपने केंद्र से कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार करें जिससे हमारे जो बेरोजगार वंचित युवा है उनको कुछ लाभ मिल सके।
1: आपके दोनों सुझाव बहुत अच्छे हैं और हम तो इन्हें नोट करके अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ऐसा तो हम वायदा कर सकते हैं।
0: कार्यक्रम का समय बहुत कम है और समय के अभाव में बस मैं इतना ही कहूंगा कि आकाशवाणी मथुरा से सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सर क्या कहा जाए, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। नमस्कार
2: जी।
1: नमस्कार
2: जी। नमस्कार। हेलो।
3: हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम
2: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं पंचमलाल चतुर्वेदी बसवा जिला दौसा से अर्ज कर रहा हूँ।
2: कैसे हैं?
3: ठीक है।
2: और आज कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे, क्या आपके सुझाव है, क्या प्रतिक्रिया है?
3: मैडम मेरी बात यह है कि एक तो सावन शुरू हो चुका और सावन की मल्हार आकाशवाणी मथुरा से प्रसारित होना शुरू नहीं हुआ है।
2: अच्छा जी।
3: और दूसरी बात यह है कि आपका नेट हमको मिलता नहीं है और आपके कार्यक्रम वैसे भी नहीं मिलते ऑफलाइन भी।
2: अच्छा, तो राजेश जी आज हमारे साथ हैं।
1: जी जी जी। चतुर्वेदी जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: और कहना ये चाहूंगा कि कार्यक्रम में अभी भी सावन के ही लोकगीत चल रहे हैं, मल्हार आपको सुनने को मिलेंगी, अभी काफी अरसा है चल रहे हैं तो हाँ। लेकिन दूसरी बात तकनीकी बात है, ये सुझाव ये शिकायत हमने नोट कर ली है और तकनीकी विभाग तक हम ये अवश्य पहुंचा देंगे।
3: सर अप्रैल 2023 से बंद है प्रसारण।
1: सर ये आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करवाएं तो उस पर आपको सुनने को मिलेंगे।
3: नहीं, एप्लीकेशन की दिक्कत क्या आ रही है सर कि कई बार नेट मिलता नहीं है, आपकी तरफ से नहीं मिले या हमारी तरफ
1: जी,
3: से नहीं मिले तो भी वंचित रहना पड़ता है।
1: इसका तो बहुत बेहद अफसोस है क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी पे आधारित है। बहरहाल पूरा प्रयास हम रखते हैं कि हमारी ओर से ये समस्या उत्पन्न ना हो। फिर भी आप इतने उत्सुक रहते हैं हमारे कार्यक्रमों के लिए, इसके लिए तो आपको धन्यवाद देते हैं और अगले कार्यक्रम में निश्चित तौर से इंतजार रहेगा आपके फोन का। तो अब करते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो रश्मि जी ये थी बात हमारे श्रोताओं की फोन कॉल्स के साथ, और चूंकि समय भी निर्धारित होता है कार्यक्रम को सहेजने का समेटने का, तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। और उन श्रोताओं के लिए जो हमारे लिए नए श्रोता हैं या हमसे बातचीत करने के इच्छुक हैं, उनके लिए आप क्या क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, आपको अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें ताकि हम और उत्कृष्ट कार्यक्रमों का निर्माण कर सकें और उत्साहवर्धन के साथ हम और कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। अगर आपको कोई शिकायत भी है और अगर आपका कोई सुझाव भी है तो उसका भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए हैं और हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से।
1: जी, तो श्रोता संपर्क कैसे साधे?
2: बिल्कुल, हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के जो श्रोता हैं वो कोड लगाएं 0565।
1: जी हाँ, और दिन होगा शुक्रवार, समय आप नोट करें 12:30 पर हम आपसे भेंट करेंगे, यानी आपकी बातें और आपके सुझाव आपकी शिकायतें हम उसके लिए आपको आमंत्रित करेंगे। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए रश्मि जी करते हैं सभी श्रोताओं से नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति राजेश शर्मा और रश्मि शर्मा की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म क्रिएचर का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है दामिनी।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में

0: तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या?
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

महेंद्र कपूर और भूपेंद्र के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म दहलीज का ये गाना, जिसे लिखा था हसन कमाल ने, संगीत दिया था रवि ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म वक्त का ये गाना। इस गीत को स्वर दिए हैं आयशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रवि ने।

लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था यादगार। शब्द रचना इंदिवर की थी, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए फिल्म वो सात दिन के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती है। हर साल 2 अगस्त को ये मनाई जाती है। भारत में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक और बंगाल्स केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक आपको माना जाता है। आपका जन्म 2 अगस्त 1861 को रारुली खुलना जिला, आजकल जो बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ। आपको नाइट राइड्स के मास्टर के रूप में ही जाना जाता है। आपने देश की पहली स्वदेशी दवा कंपनी की नींव रखी थी और आपका निधन 16 जून 1944 को कोलकाता में हुआ था। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन और योगदान के बारे में हम सबको जानना चाहिए। आप एक असाधारण वैज्ञानिक, साहित्यकार, प्रोफेसर, उद्योगपति, परोपकारी और कई अन्य गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। आपको व्यापक रूप से भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ये तो बात हुई आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में जानकारी, और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

सागर मध्य प्रदेश में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में आपने अहम भूमिका निभाई और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जन जागृति फैलाई। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

साथियों, आपने सुना पंकज उदास और साथियों को फिल्म नाम में। आपको एक और जानकारी दे दें, पंडित रविशंकर शुक्ला की जयंती हर वर्ष 2 अगस्त यानी आज ही के दिन मनाई जाती है। आपका जन्म 2 अगस्त 1877 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। आप एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपका जन्म 2 अगस्त 1877 को

0: मजबूत करने के लिए समर्पित होता है। भारत में यह अगस्त के पहले रविवार को हम सब मनाते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने मित्रों के साथ अपने दुख सुख की बात करें और अच्छा मित्र जीवन में अगर एक भी मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझें। लोग इस दिन को एक दूसरे को फ्रेंडशिप डे बांधते हुए मनाते हुए शुभकामनाएं देते हैं और भेजते हैं। ये बात हुई मित्रता दिवस की और आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था नया दौर। और अब बात करते हैं मित्रता दिवस की, यानी फ्रेंडशिप डे की। हर साल अगस्त के पहले रविवार को यह मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करने, उपहार देने, आपसी संबंध को

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथोनी। इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी साथियों को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के GI टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने

से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उभर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देश गान। 6:15 पर आप सुन सकते हैं ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रज काव्य मकरंद क्रम में राम अवतार अवस्थी को। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:50 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। आप सुनेंगे चर्चा विश्व स्तनपान सप्ताह, और मन भावन क्रम में आप सुन सकते हैं अपनी ही पसंद के लोकगीत। प्रादेशिक समाचार 7:20 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से ले करेंगे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:31 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 8:00 और 9:15 पर आप सुनेंगे सुहाने तराने। देशगान एक बार पुनः आप सुनेंगे 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। आज की फिल्म होगी पाकीजा। 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे स्वाधीनता के प्रति ध्वनिया। इसके लेखक होंगे वसुधा बनर्जी और प्रस्तुतकर्ता नवोदता मिश्रा। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर के आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे 10:00 रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। हमारी ये सभा संपन्न होगी 11:10 पर। आपको एक बार पुनः स्मरण करा दें, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पाकीजा फिल्म के कुछ गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेश्वरों में देशगान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज काव्य मकरंध, प्रस्तुत कर रहे हैं राम अवतार अवस्थी।
2: वृंदावन बिहारी लाल की जय।

0: की छो हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।
1: हमारो कन्हैया प्रेम के कारण छछिया भर छाछ पे नाचे, जाको भेद शंकर ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जाने हैं।

छाछ पे नाच नचावें, छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जा।

कब तक छिपोगे। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए कि बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे, तुम्हें रुख पे पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक।

सिन हे बांके बिहारी मीत पिया हे चपल नयन गिरधर नागर हे कुंज बिहारी मीत पिया हे द्रौपदी जीवन प्राणपति हे रास बिहारी मीत पिया हे चतुर शिरोमण बन माली हे छैल बिहारी मीत पिया हे छैल बिहारी मीत पिया। हे वृंदावन बिहारी अपने भक्तों को चरणामृत पान ऐसी कराते रहना और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। रथकान भी हमारे ब्रज में आए और जैसे कन्हैया को देखे हो तो उनके दर्शन को देख करके मनमुग्ध है गए रथकान जी और मन में बड़ा उत्साह भयो और हमारे कन्हैया के दर्शन और छवि को देखकर उनके परम भक्त है गए रथकान कवि जो हुए और कन्हैया के चरणों में जो ही नमन करे उनकी स्तुति श्रवण करे है बाको जीवन में उद्धार है जावे और बाकी सारी मनोकामना पाप पूर्ण हो जावे है। कन्हैया हमारा बड़ा दयालु और करुणा को सागर है सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे है।

ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे थे राम अवतार अवस्थी। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। ब्रजांचल में कल से सोमवार से देवालयों में भारी श्रद्धालु उमड़ेंगे। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि ब्रजांचल में आए सभी भक्तों का, सभी अपने मिलने वालों का हृदय से स्वागत करें, उनको कोई कष्ट ना हो। कांवड़ यात्रा पर जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका भी सम्मान करें और साथ साथ भगवान शिव की आराधना के साथ हम श्रावण मास में गीत और संगीत के साथ भगवत स्मरण करें।

सावन का महीना आते ही ब्रजांचल में गांवों में ब्रज गुपिकाएं अपने अपने गांव पहुंच जाती हैं और झूला झूलती हैं और आपसी भाईचारे को इस तरह हम सब मिलजुल कर बढ़ाते हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था शिव महिमा। और आइए आप सुनते हैं आशा भोसले, नरेंद्र चंचल, महेंद्र कपूर और साथियों को फिल्म अवतार में।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म गोपी में। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडेय।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जावे वालो एक वैश्विक अभियान है जो नवजात शिशुअन के स्वास्थ्य और पोषण को माँ के दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलावे है। जाकी शुरुआत 1992 में विश्व स्तनपान कार्रवाई गठबंधन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से करी गई हती। भैया जाकी जो मुख्य बात और नियम है वो जी है कि जन्म के पहले घंटा के भीतर स्तनपान शुरू करना जरूरी है। माँ को पहलो गाढ़ो पीलो दूध कोलोस्ट्रम बच्चे की पहली वैक्सीन जैसो काम करे है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे है। भैया वो पहले 6 महीना तक बच्चा को केवल माँ को दूध दें, न पानी और न ही कोई घुट्टी दें। जाता रहते अनेकन लाभ हुए हैं, जैसे कि बच्चा को संपूर्ण पोषण प्रदान करे हैं और संक्रमण व कुपोषण से बचावे है। प्रसव के बाद माँ की रिकवरी में सहायता करे है और स्वास्थ्य में सुधार करे है। भैया शिशुअन के बेहतर पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन रक्षा को माँ के दूध को बहुत ही महत्व है। भैया सावन को महीना चल रहे है, आज के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं सबसे पहले जी लोकगीत।

शालिनी शर्मा के स्वर में भैया ने आनंद लियो जालो गीत को। भैया जा समय चल रहे है बरसाती मौसम, जो भैया पशुपालन कर रहे हैं उन्हें जा मौसम में सावधानी रखने की आवश्यकता है। बरसात के मौसम में पशुओं की सेहत और सुरक्षा को बाड़े को सूखो रखवो, साफ पानी देनो और संतुलित आहार व टीकाकरण को ध्यान रखनो सबसे जरूरी है। भैया पशुशाला की छत पक्की और पानी टपकवे ते मुक्त होनी चाहिए। फर्श को फिसलन व कीचड़ ते बचावे को सूखा बिछावन पराली आदि डालें। बाड़े के आसपास पानी जमा न होने दें ताकि मच्छर मक्खी और कीट कम से कम आमें। भैया पशुओं को हमेशा साफ उबलो या छनो भयो ताज़ा पानी ही पीवे को दें। दूषित या खड़े पानी ते पेट के गंभीर रोग है सके हैं। चारे को नमी और फफूंद से बचाए कें सूखी जगह पर रखें। सड़ो या फफूंद लगो चारो पशुओं को बिल्कुल न खिलावें। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य और बीमारी की, लेकिन बातें पहले सुन लें जी लोकगीत डोरीलाल गोला के स्वर में।

भैया ने सुनो जी लोक गीत, स्वर दियो हो डोरीलाल गोड़ा ने। भैया अब बात करेंगे बरसाती मौसम में पशुन के स्वास्थ्य और बीमारी इनकी। पशुन को गलघोंटू, लंगड़ा बुखार जैसी मौसमी बीमारी ते बचावे को डॉक्टर की सलाह ते समय पे टीका अवश्य लगवा में। नमी के कारण किल्की और जुए जल्दी फैले हैं, जिनकी समय पे जांच व दवा जरूरी है। भैया बात कर रहे हैं बरसाती मौसम में पशुओं की देखभाल की। अब सुनो सावित्री दीक्षित के स्वर में जी अगलो लोकगीत।

सावित्री दीक्षित के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। अगला लोकगीत है दामोदर शर्मा के स्वर में, भैया सुनो।

अभी भैया आनंद ले रहे हैं जालो गीत को, स्वर हो दामोदर शर्मा को, कल्पना बर्मन के स्वर में प्रस्तुत है जी अगलो लोकगीत।

0: कल्पना बर्मन के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। जाई के संग आज के ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम को यहीं पर दें हैं विराम। सब भैयान को हमारी राम राम।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov।

0: www.govind.in
1: हर घर सूर्य घर
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक.
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना.
4: सुगंध क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है.
4: चल अपना कार्ड दे.
2: पिन दे.
5: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें. हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए.
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ. कहा युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी. उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की जनहित के मुद्दे सदन में रखने की अपील. भारत की अध्यक्षता में कल से लखनऊ में शुरू होगी ब्रिक्स देशों के एनएसओ की दो दिवसीय बैठक. सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने समेत कई विषयों पर होगी चर्चा. और कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम. कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया डायवर्जन. नमस्कार. प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है. श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है.
7: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है. और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है. और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं. और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है.
6: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाए नहीं.
7: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं. जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें.
6: इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई. इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है. राजधानी लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाग लिया. इस दौरान श्री सिंह ने कहा यह अभियान जनभागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है.
8: सरकार कानून बना सकती, संसाधन उपलब्ध करा सकती, लेकिन चरित्र निर्माण केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है. और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में शांति, आत्म जागृति, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया है.
6: देशभर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलेंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए. राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है. सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आज विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित

0: से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने, स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हम तो सभी लोगों से हमने सहयोग मांगा यार, जो बिजनेस होता है जिस हिसाब से उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता है। बिजनेस थोड़ा बिजनेस है, चार दिन का सत्र है, कल विधानसभा में तो निधन का निर्देश होगा और उसके बाद तीन दिन पूरी तरीके से जो परंपरागत तरीके से कार्रवाई है वो होगी संपादित।
0: बैठक में निषाद पार्टी, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक पार्टी, अपना दल एस, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भाग लिया। ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक कल और 4 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की बैठक कल और 4 अगस्त को भारत की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है ताकि साक्ष्य आधारित, समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 3 अगस्त को प्रशासनिक डेटा की क्षमता और 4 अगस्त को विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज लखनऊ के 1090 चौराहे से द राइडिंग चैप्टर्स विजिट माई स्टेट के पहले संस्करण का शुभारंभ कर 65 बाइक राइडर्स के दल को बांदा जिले के कालिंजर किले के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदेश के कम चर्चित विरासत, प्राकृतिक स्थलों और धरोहरों को नए पर्यटन अनुभव के रूप में देश दुनिया के पर्यटकों के सामने पेश करना है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बाइक राइडर्स के दल को रोमांचक यात्रा के लिए रवाना किया गया है। कल सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 सीसीटीवी कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। वहीं हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हापुड़ से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
3: सावन के पहले सोमवार को हापुड़ जनपद के सभी मंदिरों में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना और जल अभिषेक होगा। सुरक्षा के मद्देनजर हापुड़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था बनाने के लिए स्वयं सेवक भी तैनात किए गए हैं। वहीं कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर के जनपद में कांवड़ मार्ग निर्धारित कर रूट डायवर्ट कर दिया गया है और जो 31 अगस्त तक लागू रहेगा। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। यह परीक्षा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 1 सितंबर 2026 तक आवेदन पत्र भरकर शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन

0: में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने इससे पहले 10000 मीटर में रजत पदक हासिल किया था। दोनों दूरी की दौड़ों में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलब्धि पर धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रमंडल खेल की इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक है और उनकी पिछली सफलता के बाद उनके सफर में यह एक और गर्व का अध्याय जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर सिंह को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। कहा, युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की जनहित के मुद्दे सदन में रखने की अपील। भारत की अध्यक्षता में कल से लखनऊ में शुरू होगी ब्रिक्स देशों के एमएसओ की 2 दिवसीय बैठक। सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। और कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्याम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले संदेश मिला है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, जाहिद आसमा, यूसुफ आसमा और अल्ताफ आसमा, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बिलदार, सोनम वली डोम, कल्लू मल्लू कालिया और फातिमा डोंग, चंडीगढ़ से शेफ अली देवस, बिमला और सतीश अनेजा, मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत रोजेश भाई, चंडीगढ़ सिटी से शेफ अली और सतीश, और ये संदेश हमें मिला है गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, रहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान, और ये संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा, बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष रजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और इनके परिवारीजन,

और ये संदेश हमें मिला है अनारकली बाजार जगराओ से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मेहलुत्रा, गबया, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और उनके साथी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या। और ये संदेश हमें मिला है फजल का पंजाब से भूषण, खेड़ा, विशु, लाड़ी, विशाल, शालनी, तिबनाशी और इनके परिवारीजन। केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से टीडी मेहलुत्रा, शुभचंद बजाज और इनके परिवारीजन। आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत।

कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर को आपने सुना फिल्म नसीब में। अब हमें जो संदेश मिले हैं सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से, लाडली चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सचिम चौबे, मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ से, सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश सरबद, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और हर्षिता। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नेती कुमारी। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी और पुष्पेंद्र कुमार डूड़ी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी, निमित आहूजा, आपने मित्रता दिवस की बधाई भी भेजी है और साथ में अपनी पसंद का गीत भी सुनने के लिए हमें संदेश भेजा है। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, और ये संदेश हमें मिला है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और उनके घर के सभी सदस्य। आप

मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुधन सिंह, गौरव सिंह, जानवी और दश। परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपेंदर, कुलदीप, सिमू, दमन और अभिजीत। बठिंडा पंजाब से मुंडा टोला बालोल छत्ती।

छत्तीसगढ़ से डोबेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेशा और माहिर नेताम, गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर सिंह, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकल, रतनमाला, ओम कुमार, आरती कुमारी, विद्या कुमारी, आराध्या, कुमकुम, विजय सरलकर महाराष्ट्र से, नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित, अहिल्यानगर से हरिभाव, बी डवे, वंडू पोपलघट और पांडु चंदन, साधुर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, और ये संदेश हमें मिला है शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा, राशि और कीर्ति भारती, सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, सुशील और इनके परिवारीजन। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म जुर्माना में। इस गीत के साथ ही श्याम सोहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे फिल्म मेला में। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में फिल्म मिलन का ये गीत।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को, फिल्म का नाम था मिलन। और आइए आप सुनते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म लव स्टोरी में।

लता मंगेशकर और अमित कुमार को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आप उन्हें आनंद ले सकते हैं सुहाने तराने कार्यक्रम में फिल्म संगीत का, रात्रि 9:15 पर। और आप सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। अभयार कारणों से शाम को प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। ब्रज ग्रामीण किसान वाणी कार्यक्रम अब शाम 6:15 के स्थान पर 6:50 से 7:20 तक प्रसारित होंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय 6:30 से 6:50 तक रहेगा एवं ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय 6:15 से 6:30 तक रहेगा। कार्यक्रम संबंधी सूचना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

जाने मन जाने मन जाने मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन।

जाने मन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन।

ऐ वतन जाने मन ऐ वतन ऐ वतन।

संवेश्वर में आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है पाकीजा। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने पाकीजा फिल्म के कुछ गीत सुने, आवाजें थी लता मंगेशकर की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।

0: और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान

0: राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार

0: पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम

0: हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरल में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation.

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म फागुन में। और आइए अब सुनते हैं सावन को आने दो फिल्म में यशोदास को।

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को, फिल्म का नाम था बेटा। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।

साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राजबिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और तरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी।

21 अक्टूबर 1943, आज़ाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को संवारा और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।

0: 1996 में जल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया, ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था 1942 में, क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
1: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
0: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको तीन टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास टूटी, दिस दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन एच बी बराल, हिम बहादुर बराल को दिया गया, और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
1: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
0: दिस इज द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom kadam kadam badaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, no melody, kadam kadam badaye ja khushi ke geet gaaye ja la la la la la la la la la la la la la la la, this is melody, now is a brass beauty, la la la la la la la la pa pam pam pam pam pam pa pam pa pam tam taram taram tam pam pam pam da da, this is the brass tuti, this is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein lane ke, then again is the melody, la ra la ra ra ra ra ra खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए, मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है, वो सब कुछ इस गीत में है।

0: के झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ।

0: है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर झूमेंगे। अब ये जो जज्बा है, ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
1: युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए, तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
2: The trial began on the 5th of November and ended on the 31st of December of 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support

0: हंसते हंसते जीना नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट ज्ञानचंद हसरत जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।
3: वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन की, वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: हम लिया। जय हिंद भाइयों, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: द ट्यून ऑफ शुभ सुख चैन की इज स्लाइटली डिफरेंट, देयर आर न्यूएंसेस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्यून ऑफ दिनेंद्रनाथ टैगोर्स जनगण मन। देयर आर मोर कोमल नोट्स दैट हैव बीन एडेड। The second verse of the Jana Gana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Ahara tabo avhana pracharita shunitabo udara bani Hindu Bodha Shikha Jaina Parashikha Musalmana Krishtani।

0: see the Jai Ho Hey becomes Jai Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जन गण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत

0: के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजूमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजूमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत एंड भजन्स फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपियंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
1: तानसेन, कालिदास, सवाई

0: उत्सव जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
1: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
0: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibadh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahe roke gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हार्मोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

राग पुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बर्निन जाए सखी, जो झपताल में निबद्ध है।

0: तृष्णा के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी, जो त्रिताल में है।
1: That was a classical vocal performance by श्री सुधाकर देवली in राग पुरिया। श्री देवली will now present राग बसंती केदार, set to झपताल with the lyrics बर्नीन जाए सकी, set to त्रिताल with the lyrics बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत

0: संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal. higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity.